0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते मैम।
1: जी नमस्ते, आपका नाम?
2: रानी बोल रहे हैं। आप क्या
1: जी? जी रानी जी, आपको किस फिल्म का गीत सुनना है?
2: कुछ कुछ होता है तो कोई भी गाना सुनवा दीजिए।
1: अच्छा ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं उसके। जी बिल्कुल, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: हम ठीक है मैम, हाउस वाइफ हैं, ड्यूटी का जॉब करते हैं।
1: अच्छा आप कौन सी जॉब करती हैं?
2: काम करते हैं।
1: अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, हम सभी को काम करते रहना चाहिए क्योंकि जीवन में हमेशा अपने आप को किसी काम से जोड़े रखना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है।
2: टाइम पास हो जाता है और किसी बात की टेंशन भी नहीं रहती है, दिमाग भी स्वस्थ रहता है।
1: बिल्कुल सही बात है कि हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहता है जब हम काम किसी काम में लगे रहते हैं, तो हमारा हर बैलेंस बिल्कुल मेंटेन रहता है। तो आइए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।
2: जी मैम, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।

0: श्रोताओ, अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते जीवन से जुड़ा एक संदेश मैं आपको देना चाहूंगी। जीवन के हर दिन एक नया सफर अवसर लेकर आता है। कभी परिस्थितियां हमारे अनुसार होती हैं, तो कभी हमें परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है आशा। जब तक उम्मीद बनी रहती है, तब तक हर कठिन राह आसान बन सकती है। इन्हीं विचारों के साथ हेलो अयोध्या कार्यक्रम में मुझे दीजिए अनुमति। कार्यक्रम को सफल बनाने में कंट्रोल रूम से तकनीकी सहयोग दिया अश्विनी शुक्ला जी ने। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों के साथ।
1: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashvani@gmail.com।
7: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। अब से शाम 5 बजे तक आपके साथ मैं रहूंगी, आपकी

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय में इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा पदस्थ रहा उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव एक रिश्ता बना रहा।
1: जी, रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता है ही।
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
2: की स्मृतियां हैं मेरे पास।
1: जी जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे।
2: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
2: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं,
1: जी,
2: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था।
1: जी।
2: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी।
1: जी।
2: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: जी जी जी।
2: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव की भांति मैं वहां से चला जाता था।
1: क्या बात है।
2: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहाँ मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे।
1: अरे वाह।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे।
1: गजब।
2: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे। बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था, या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सीवाई चिंतामणि और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है।
1: जी जी।
2: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र

0: साथ प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है। एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है
1: जी।
0: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं, तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है। सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं
1: जी।
0: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था
1: जी।
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है, तो वो परिवेश का असर क्या होता है? एक असर होता है परिवार का। तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा,
0: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था। लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था।
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूँ।
1: जी जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी, कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूँगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान
1: जी।
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी। सर्वेश्वर लाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी,
1: 3 पेज
0: की चिट्ठी
1: सर्वेश्वर,
0: और हाँ उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया मैं
1: लिख डाला।
0: सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई? तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है? मैंने कहा नहीं, लौटाई दी, बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने इतनी कम कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ, तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है,
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ के पानी में कुछ ऐसा है तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूँ जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात है।
0: तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल,
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है, और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी, क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना

0: कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
1: नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे, और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पे कानूनी कार्रवाई होती है। बोले अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूँ कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी, उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूँ उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा,
0: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे
1: चलेगी। तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हो और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा, लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा। सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते,
0: जी जी,
1: वो एक गवैया बन जाए,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात
0: जी। तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
1: तीन लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और मुझे मिला नहीं।
0: अच्छा।
1: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक।
0: अच्छा।
1: शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवामयन कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूँ। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूँ, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए, मैंने बड़ी मेहनतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को उस पत्रिका को वापस कर दिया।
0: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी

0: आज आप एक सकारात्मक
1: जो कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई, कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी
0: जी।
1: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूँ। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा के वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
0: जी। तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
1: संग्रह वाली कविता एक
0: दो लाइन सुनाइए।
1: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के में जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी
0: जी,
1: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था। तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं एक चिट्ठी लाया हूँ और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
0: रोक लिया।
1: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
0: जी,
1: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो उनकी घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्ट 1 में रहा हूंगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
0: जी आप अगर सुनाए हमारे,
1: हाँ
0: तो 4 लाइन,
1: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
0: क्या बात है, वाह।
1: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है। घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
0: क्या बात है, वाह।
1: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल है, शेष कुशल है।
0: शेष कुशल है, क्या बात है।
1: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
0: वाह।
1: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं।

0: आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंदर सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे
0: जी।
1: तो
0: दुष्यंत कुमार

0: साए में धूप उनकी बड़ी मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं तो व्यंग नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा, तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं, जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया, वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर,
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
0: जी, जी,
1: तो हम
0: जी।
1: उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी, तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब फैज मीर उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
0: जी, तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुदित हुआ, इसके बारे में बताइए। इसकी क्या कहानी है?
1: क्या था कि मैं श्रद्धेय में प्रभाष जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
0: जनसत्ता के संपादक थे,
1: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा, तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
0: जी,
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
0: जी,
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है, तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया, तो एक उपन्यास मिला मुझे लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे रागों का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
0: अच्छा अच्छा,
1: कि मैंने की लंबी कविता में लिखूंगा। 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर

0: रुक गया और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी जी।
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे। मैं उनके पास वो नाटक लेके गया। मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: इसका मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है।
1: जी जी।
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है।
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा।
1: जी।
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी। हाँ। उनका आशीष था।
1: जी।
0: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था।
1: जी।
0: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा
1: कहाँ पर था, किस
0: वेदा कुंभा थिएटर में।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बात के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद,
0: 9 भाषाओं में अब तक
1: मराठी में
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें।
1: जी।
0: इसकी और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं 2-3 महीने में, वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई नामकरण कैसे,
0: कबीर की पत्नी है उनका नाम है।
1: जी, बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
1: तुम गाना साया। साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी, क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है ये, इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी,
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा परिदृश्य नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो वो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह
0: वाह।
1: एक

0: की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह वा, जीती रहे मेरी बेटी मलाला। तो ये मलाला के लिए ये कविता, तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20-30 से ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
1: क्या बात है, अगर चार लाइन सुनाना चाहें तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, तीन बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह, मार्मिक कविता।
0: तीन दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। तीन दिन, तीन बच्चे, एक माँ, एक खबर।
1: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाएं? हाँ। पान खाएं सैया हमार।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहाँ की यादें ताजा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए, मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है
0: जी,
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात
1: तुझे
0: है?
1: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है और वो में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे हैं तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी जी।
1: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हंट करता है।
0: जी जी।
1: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूँ जब हंट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहाँ आपका बचपन,
1: क्योंकि आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
0: जी क्या बात है,
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे?
1: देखिए, पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके।
0: जी जी।
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है, मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं।
0: जी जी।
1: वहां जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इस काम से आपकी आजीविका चलती है, तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
0: जी जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको?
1: हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम। हाँ।

0: तो कुछ और कर लो
1: जी,
0: हमने क्या कर उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
1: कुछ करने
0: हम
1: आए
0: लगाने आए हैं
1: जी, बिल्कुल,
0: हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ
1: सृजन करने आए हैं जी जी।
0: तो हम इस भाव से आए, तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, यह मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती मेरे पास।

0: पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती मेरे पास, चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास
1: नजरिया।
0: तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते? आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे?
0: पहली बार देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में, मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया।
1: जी जी।
0: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गईं, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली, गंगा यमुना, उसमें रविंद्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा।
1: इलाहाबाद के
0: अकेला ही पीर बाबरची भिस्ती खर था उनके साथ, तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी। फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा, फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। तो टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए, फायदा तो होता है। उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
1: जी।
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं
1: जी।
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसपे सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
1: जी,
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहाँ
1: जी।
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा, रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, एक्सपॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
1: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप बहुत क्या करना चाहते हैं?
0: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं। हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है
1: बिल्कुल,
0: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की, उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लीगेसी थी वो लीगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लीगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं
1: बिल्कुल।
0: तो वो अनुभव अगर हमको, ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: कविता माने कविता नहीं रही
1: जी, जी।
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है, हाँ। तो वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई, मैं बच्चों

0: से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करें।
1: जी, तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता?
0: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो आप वो जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा।
1: जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन सजेस्ट कीजिए।
0: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपका जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुशी गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

मोहम्मद रफी और साथियों को आप सुन रहे थे। फिल्म धर्मपुत्र की ये कव्वाली थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था।

0: बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक दादरा गीत आप सुन रहे थे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।

0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं की जरा याद करो
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: ये पॉप गीत आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में, समीर के बोल थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज थी, देव कोहली के बोल थे, आनंदराज आनंद का संगीत था। ये फिल्म थी हमको तुमसे प्यार है।

0: शाहदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला राम लक्ष्मण ने।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल का 10वां भाग।

अभी आपने सुना विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल का 10वां भाग 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं अवधी लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
5: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
6: RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: जनगणना 2027 में मकान सूची

कार्यक्रम लोक रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अपने इस कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं अरविंद मौर्य और साथियों के स्वर में गाए इस किसानी से।

अभी आपने सुना अवधि लोकगीत, विकास लोकगीत शीतला प्रसाद वर्मा और साथियों के स्वर में। और अब आपको सुनाते हैं अवधि सोहर सुषमा गुप्ता और सखियों के स्वर में।

0: आपकी बात कार्यक्रम में
1: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
0: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
1: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
2: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
1: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
2: 830-321-9911 पर भेज दें।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: अभी आप सुन रहे थे अवधि लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: सर्वेक्षण गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: स्वागत अभिनंदन सभी सुनने वालों का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कुछ तुमने कहा। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हमें मिलते हैं फेसबुक के माध्यम से, तो शामिल करने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आज के हमारे पहले शामिल होने वाले श्रोता हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल। बड़े गैबी चौराहा वाराणसी से हैं हमारे श्रोता अरुण कुमार मालवीय दर्द। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा। नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल शावड़े। बाजार रोड मुंगेसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी। लाहौटा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत। कस्बा उगैती बदायूं से हैं धीरज गुप्ता। महोबा बुंदेलखंड से हैं नरसिंह राजपूत। अगले श्रोता हैं छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर। गुलबालो तहसील आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं विक्रम मालवीय। चंडीगढ़ से हैं सतीश आनेजा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी। दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से हैं विष्णु मस्कीन। मौनाथ भंजन से हैं राजेश कुमार वर्मा। सहारनपुर से हैं राधा नामदेव। और अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक।

कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित के आवाज में फिल्म फांसी का ये गीत। इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं फेसबुक के माध्यम से और अपने सुविचार भी लिखकर जरूर भेजिए, क्योंकि हमें है इंतजार आपके सुविचारों का। फिलहाल शामिल करते हैं अपने अगले श्रोता को। ये है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग। सुरेश चौरसिया हैं फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से। लवा टेपरा गोंडा से हैं कांति शुक्ला। देवरी भाटापारा से हैं के आर साहू। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से हैं मोहम्मद फरमान। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश गोस्वामी। बेडी मध्य प्रदेश से हैं हुकुम करमरकर। कस्बा उगहती बदायूं से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता। जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं माधव नामदेव। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से हैं उदय भान पाल। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं चंद्रकांत साहू। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा। सागर से हैं तिलक राणा। शाहजी नगर देवलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे। पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा। गुरमे सिंह मीता हैं साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। लदावली जिला मुरादाबाद से हैं अजीत कसाना। नई बस्ती गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद यासीन हाशमी। मदरसा गेट भावपुर बढ़ियाऊ जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी। आप सबके लिए लाए हैं कार्यक्रम में अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म प्रेम पुजारी से। शब्दों में पिरोया है नीरज ने और संगीत से सजाया है SD बर्मन ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म प्रेम पुजारी से।

0: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं फेसबुक पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। और श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं।

0: आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: अंतराल के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, शुरू करते हैं एक बार फिर से आपके कमेंट्स को शामिल करने का सिलसिला। हमारे अगले श्रोता हैं नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, लोहारी दिल्ली जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से हैं अशोक कुमार साहू, जमानिया जिला गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, अडार नाथगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, कोहकरन वाली से हैं विनोद बारासा, नंद कुमार ठाकुर हैं हमारे श्रोता ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, गांव आरायन जिला श्री गंगानगर से हैं डॉक्टर बनवारी लाल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से हैं विनोद मूड़त, भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, पद्मा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से हैं शंकर लाल जायसवाल, कुंभार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, कटरा चांद खां मौर मंदिर वार्ड नंबर 11 से पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, माझा तरहर गोंडा से हैं प्रवीण कुमार शुक्ला, मदरसा गेट भावपुर मणियाऊ जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी, गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौड़। आप सभी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म दोस्त से, आवाज है किशोर कुमार की और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

गाड़ी बुला रही है। बिल्कुल, गाड़ी तो हमारी इस कार्यक्रम की लगभग 24 मिनट निकल चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारा सफर बाकी है, यानी कि आधे घंटे से ज्यादा का सफर बाकी है। तो देर नहीं करते हैं और शामिल करते हैं अपने अगले श्रोता को। हमारे अगले श्रोता हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से हैं अशोक श्याम कुंवर। गांव फरासी हिसार से हैं राजकुमार डूडी। अगले श्रोता हैं मेरठ से दिग्दर्शन जवाहर नगर दुर्ग से हैं हमारे श्रोता आरसी कामड़े। गंज डुंडवारा से हैं शमशुल कमर राही। राजनगर मधुबनी बिहार से हैं नवीन सिंह।

गांव जाखो से हैं शंभू दयाल खटक, चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश गौतम, हरदोई रोड लखनऊ से हैं मास्टर खिल्लू परवेज। आपने अपने बहुत ही खूबसूरत विचार भेजे हैं, सेव वाटर सेव लाइफ। बिल्कुल, पानी को अगर हम सेव करेंगे बचाएंगे तो हमारी लाइफ और आने वाले पीढ़ी की भी लाइफ सेफ होगी। अगले श्रोता है रामसिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं मीका विर्क, सलार पहलगाम कश्मीर से हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, आकोट से हैं विनायक बेंडे, सफीदो सिटी हरियाणा से हैं नानक खन्ना, गांधीनगर गुजरात से हैं जीके परमार। आप सबके लिए है अगला गीत मन्ना डे की आवाज में फिल्म सफर से। गीत है इंदिवर का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ, समय कह रहा है कि हमें चलना होगा एक और अंतराल की तरफ, लेकिन अभी बहुत सारा सफर बाकी है, मतलब बहुत सारा समय बाकी है हमारे इस कार्यक्रम में, तो कहीं भी जाइएगा नहीं।

0: अभी हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
3: दीवाने।
4: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
3: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
0: एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कुछ तुमने कहा। और आज मैं हूँ आपकी साथी रेडियो दोस्त तबस्सुम जहां, आपके साथ आपका ये कार्यक्रम लेकर। चलिए एक बार फिर से शामिल करते हैं अपने और श्रोताओं को। ग्राम देगांव तहसील पूड़ा महाराष्ट्र से हैं सदाशिव थोरात। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी। जिला औरैया उत्तर प्रदेश से हैं अमानतुल्लाह खां। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नावकर। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से हैं गजानंद येले। दादा बाबू रोड ग्रीडी झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अंजान। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं विनोद वंडलकर। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय। वन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं योगेश सारवा। जसपुर उत्तराखंड से हैं हमारे श्रोता रियासत हुसैन सिद्दीकी। जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं नारायण लाल साहू। बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद कुमार साहू। खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा नीटू। बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान। आप लिखते हैं जल बचाएं और अपना कल बचाएं। बिल्कुल, बहुत सही बात और आज की ये बहुत ही जरूरत है। अगले श्रोता है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह। गांधी चौक बाड़मेर राज से हैं बबलेश पवार। शनि बाजार कस्बा उगहती से हैं प्रभाकर गुप्ता। कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं राहुल भाबिस्टे। रावर करनाल से हैं विनोद लाखनपाल। आप सबके लिए कार्यक्रम में अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म राजकुमार से।

अगले श्रोता को, हमारे अगले श्रोता हैं बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नाताम। बेटी से हैं राजेश सोनी और राजधानी रायपुर से हैं नीलू मेघ नीलम। आपने लिखा है, नदी बची तो जल बचेगा, पेड़ बचे तो कल बचेगा। बहुत अच्छी बात आपकी, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज आपके हैं। और अगले श्रोता हैं गाड़ी खाना चाई बासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा। आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस। बुलठाणा महाराष्ट्र से हैं वासुदेव बोदावड़े। रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से हैं गंगा सिंह रावत। कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल। ओखला संगम विहार दिल्ली से हैं रणधीर गुप्ता। गावना थाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं राजू कुमार। अगले श्रोता हैं झारखंड से नजमुल हुदा जावेद। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं हमारे श्रोता सुखविंदर सिंह जौड़ा। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं अशोक सिंह। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खां। आप सबके लिए कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म मुद्दत से। इस गीत को अपनी सुमधुर आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म मुद्दत से।

0: श्रोताओं हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद।
1: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
2: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
1: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
2: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे, तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
1: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
2: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
1: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
3: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में

अंतराल के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और अब शामिल करते हैं अपने और श्रोताओं को। गांव हांडी खेड़ा सिरसा हरियाणा से हैं राधेश्याम शर्मा, संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मीणा, ग्रामो पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से हैं मनीराम पाल, शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, ग्रामो पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से हैं शाहरुन्नूर अंसारी, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से हैं दिलशाद हुसैन, पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, दलपतपुर से हैं ओम पाल गंगवार, कस्बा उगहती बदायूं से हैं धीरज गुप्ता। अल्ताफ हुजरे का भी हमें मैसेज मिला है, लेकिन आपसे कहेंगे कि आप अपना एड्रेस भी ज़रूर लिखें और हो सके तो सुविचार भी ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके सुविचारों पर ही आधारित हमारा ये कार्यक्रम है। अगले श्रोता हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, गांव बांडीवाला फाजिलका से हैं ओम बगड़िया, हजारीबाग झारखंड से हैं वीरेंद्र भगत, जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त।

मैसेज मिला है, लेकिन आपसे कहेंगे कि आप अपना एड्रेस भी ज़रूर लिखें और हो सके तो सुविचार भी ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके सुविचारों पर ही आधारित हमारा ये कार्यक्रम है। अगले श्रोता हैं कालका से शुभचंद बजाज, गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, गांव बांडीवाला फाजिलका से हैं ओम बगड़िया, हजारीबाग झारखंड से हैं वीरेंद्र भगत, जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त नाभा। अगले श्रोता हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, आप लिखते हैं आपका हर पल खुशियों से भरा हो, तो हमारी भी यही तमन्ना है, हमारी भी यही आरजू है और विश है अपने उस रब से कि आप सभी का हर पल खुशियों से भरा हो, आप हंसते मुस्कुराते रहें। और अब शामिल करते हैं अगले श्रोता को, दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिकलानी, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हैं बसंत कुमार सिन्हा, गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, ग्राम पजौनिया जिला जालौन से हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया। आप सबके लिए लाए हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म कामचोर से। इस गीत को सुमधुर आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, गीत है इंदीवर का और संगीत राजेश रोशन का।

भेरूलाल वाकत्रिया धाकड़ ने हमें कमेंट भेजा है उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हमारे श्रोता हैं सिद्धार्थ गोंडा ने। गुजरात गांधी ग्राम से हैं प्रवीण सोनी। बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव। तो श्रोताओं, हमारे उन सभी श्रोताओं का बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें फेसबुक के माध्यम से मैसेज कमेंट्स भेजे और अपने सुविचार भी भेजे। तो आपसे फिर कभी किसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी, अभी दीजिए अनुमति।

श्रोताओं, चलते चलते अपने कुछ श्रोताओं के नाम शामिल कर लेते हैं। पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा दिवाकर, कस्बा सेंथल जिला बरेली से हैं फरियाद हुसैन अंसारी, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हैं फैसल इमाम,

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी भजन गीत गजल पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
4: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम गीतांजलि में सभी सुनने वालों का बहुत ही स्वागत है तबस्सुम जहां की तरफ से। और इस कार्यक्रम की पहली पेशकश है जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत गजल और भजन पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि। और इस कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे आथर जैसा न कोई।
1: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अब आपको सुनवा रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत कैलाश खेर की आवाज में।

0: तला तजीज की गाय सी गजल के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं।

0: किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर

0: रुख अपनाना होगा।
1: ओमान के खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेस में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के

0: इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिल्ली से समाचार के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। अब हमारी बहनें सुने अपना कार्यक्रम नारी जगत।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को पुष्पा का नमस्कार। बहनों, माँ बनने का सुखद एहसास जिंदगी में खुशियों के रंग भर देता है और परिवार में भी सभी के चेहरे खिल उठते हैं जब सबको ये पता चलता है कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। और इसके साथ हमारी जो गर्भवती बहन होती हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी थोड़ी बढ़ जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। उनका खान पान सही हो, समय पर सभी टीके लगवाए जाएं, प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स या स्वास्थ्य कर्मी की देख रेख में अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव कराना माँ और बच्चे दोनों के लिए अधिक सुरक्षित जो है बताया जाता है। खान पान का, दवाइयों का जो रूटीन डॉक्टर ने बताया है उसे पूरी तरह अपनाना बहुत जरूरी होता है। प्रसव के बाद की देखभाल भी बेहद जरूरी होती है। पर्याप्त आराम होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए और पौष्टिक भोजन के साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी जरूरी हैं, जिससे दोनों जो है माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। और यह केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं है, हर महिला का मूल अधिकार। हर महिला का जो है ये मूल अधिकार होता है, जो बनो जिससे दोनों स्वस्थ रहें। और यह केवल स्वास्थ्य का जो है

विषय नहीं होता है भाई, उनका मूल अधिकार होता है। और स्वस्थ माँ ही स्वस्थ परिवार और समाज की नींव होती है। एक स्वस्थ बच्चा ही समाज की प्रगति में अपना योगदान दे पाता है, फिर चाहे बेटा हो या बेटी। समाज में दोनों की हिस्सेदारी बराबर होती है। बच्चे स्वस्थ और फिट हों ये बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चे स्वस्थ और फिट भाई रहेंगे तभी जब उनकी दिनचर्या में खेल को जो है वो अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। आज हम बहनों आपको बता दें कि हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल केवल देखिए मनोरंजन का साधन ही नहीं होता है, बल्कि यह हमें अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का जो है विकास जो है इससे होता है हमारा। इसलिए खेल को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें अपने बच्चों विशेषकर बेटियों के जो है उनके जो खेलों में भाग लेने के लिए जो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और जिससे वो अपने सपने को उड़ान दे सकें। और आज की जो हमारी कहानी है ऐसी ही एक बेटी पर आधारित है जिसने खेल के क्षेत्र में अपनी मेहनत और बुलंद हौसले से जीत हासिल की। तो बहनों शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। बहनों निशा जब भी टीवी पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो है मैच देखती उसकी आंखें चमक उठती, बल्ला घुमाती खिलाड़ियों को देखकर वह सोचती एक दिन मैं भी ऐसी जर्सी पहनूंगी। निशा पढ़ाई में अच्छी थी, घर के कामों में भी जो है माँ का हाथ बटाती थी, पर एक बात से वो बहुत दुखी रहती थी कि उसने जो सपना देखा है उसे वो पूरा कैसे करेगी, क्योंकि घर परिवार आस पड़ोस के लोगों का उसका क्रिकेट खेलना जो है बिल्कुल पसंद नहीं था। उस दिन जैसे ही वह बैट बॉल लेकर घर से निकलने ही वाली थी कि पीछे से पिताजी ने टोका, कहाँ चल दी बैट बल्ला लेकर। निशा बोली, पिताजी प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। पीछे से भाई की भी आवाज आई, पिताजी इसको बोल दो मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने ना जाया करे, सब मेरा मजाक बनाते हैं। पिताजी ने बड़े प्यार से निशा को अपने पास बैठाया और बोले, बेटी देख तू अब बड़ी हो रही है, 10वीं की परीक्षा भी नजदीक है, ये खिलाड़ी बनने का जो तेरा जुनून है ना वो अपने दिमाग से निकाल दे, खेलना छोड़कर पढ़ाई कर और घर के कामों में माँ का हाथ बटा। माँ अगर बहुत, फिर बोले निशा के पिताजी, अगर बहुत तेरा मन है तो सिलाई पेंटिंग बुनाई ये सब सीख लो जो तेरे बहुत काम भी आएगा, और इसके साथ तेरा एक सपना मैं ज़रूर पूरा कर सकता हूँ, वो है शिक्षिका बनने का सपना। पर पिताजी, निशा बोली, मैंने तो शिक्षिका बनने का सपना कभी देखा ही नहीं, ये तो आपका सपना है कि आप अपनी बेटी को एक शिक्षिका बनाना चाहते हैं। पिताजी बहुत, उनका जो है मूड उनका बहुत ही खराब हो गया। उन्होंने जो है निशा की माँ को बोला, समझाओ अपनी लाडली बिटिया को कि बेकार की जिद ना करे, उसके भविष्य के लिए जो बेहतर है वही हम उसको उसके लिए करना चाहते हैं। निशा की माँ ने बहुत साहस जुटाकर अपनी बात रखी। फिर जो है निशा के उसके जो सपने हैं उसकी जो इच्छाएं हैं उसका क्या मैं गला घोट दूं, वो अपना लक्ष्य पाने के लिए किसी भी हद तक मेहनत करने को तैयार है, फिर हम लोग क्यों नहीं उसका साथ देते। किसी की भी बात का भी जो है निशा के जो पिताजी थे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें तो बस अपने मान प्रतिष्ठा की ज़्यादा फिक्र थी। इस जगह पर हम ये कहेंगे कि भाई उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल गलत थी। मान प्रतिष्ठा जो उनकी थी वो तो बेटी का साथ देने से बढ़ती ना कि घटती। इन सब बातों से निशा बहुत उदास हो गई थी। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटी क्यों दुखी हो, मतलब माँ ने बात की अपनी बेटी से। तो निशा ने कहा, माँ सब लोग मुझे क्रिकेट खेलने से रोकते क्यों हैं। माँ सच, फिर माँ ने कहा, सच में क्रिकेट खेलना तेरा जुनून है, तू मतलब और किसी क्षेत्र में अपना करियर नहीं देखना चाहती। निशा ने कहा, हाँ माँ मैं इसमें ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता है। इसके साथ मैं पढ़ाई तो करूँगी पर अपना जो एक मैंने जो सपना देखा है अपने लिए मैं एक महान क्रिकेटर बनना चाहती हूँ। माँ कुछ देर सोचती रही फिर बोली, अगर तेरा सपना सच्चा है तो मेहनत भी सच्ची करनी होगी। उसी दिन से उसने ठान लिया कि अब तैयार हो जाना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए।

उस दिन पहली बार निशा को लगा कि कोई उसके साथ खड़ा है। निशा के गांव में क्रिकेट कोचिंग नहीं थी, अच्छा उसके पास बल्ला नहीं था, खेलने के लिए मैदान नहीं था, लेकिन निशा ने हार नहीं मानी। सुबह 4 बजे उठती, दौड़ लगाती, स्कूल जाती, शाम को अभ्यास करती, पुराने बल्ले से प्रैक्टिस करती। कई बार उसका जो बैट था वो टूट जाता, कई बार गेंद खो जाती, लेकिन उसका जो अभ्यास था वो नहीं रुकता। एक दिन स्कूल में जिला स्तरीय क्रिकेट चयन की जो है टीम आई, खेल अध्यापक ने उसकी प्रतिभा जो है देखी हुई थी, उन्होंने कहा, निशा तुम जरूर चयन प्रतियोगिता में भाग लो। निशा बोली, घर वाले इसके लिए अनुमति नहीं देंगे सर जी। फिर जो है अध्यापक ने कहा कि मैं खुद चल के तुम्हारे घर जो है बात करूंगा। तो उन्होंने जो है अध्यापक ने वो उनके घर गए, उन्होंने उसके निशा के पिता से बात की कि आपकी बेटी में जो है असाधारण प्रतिभा है, इसे एक मौका जो है आपको जरूर देना चाहिए। बहुत समझाने के बाद निशा के पिता तैयार हुए, लेकिन बोले, अगर जो है चयन नहीं हुआ तो फिर क्रिकेट खेलना बंद। निशा ने सिर हिलाकर हामी भर दी और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था।

0: कहानी का आगे का भाग सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
7: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
6: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
7: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
6: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
7: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
0: चयन प्रतियोगिता का जो है दिन आ गया, सैकड़ों खिलाड़ी मैदान में थे।

निशा जो है वो घबराई हुई थी, लेकिन जैसे ही वह मैदान में उतरी उसने अपना पूरा ध्यान खेल पर लगा दिया। उसने शानदार बल्लेबाजी की, कोच उससे बहुत प्रभावित हो गए। कुछ दिनों बाद परिणाम आया, निशा का जो है टीम में चयन हो चुका था। पूरा परिवार हैरान था। पहली बार पिताजी की आंखों में गर्व दिखाई दिया। उन्होंने कहा, बेटी हमें तुम पर विश्वास करना चाहिए था। अब निशा का संघर्ष और भी बढ़ गया। सुबह अभ्यास, दिन में पढ़ाई, शाम को फिटनेस के साथ अभ्यास। कई बार उसको चोट लगी, कई बार हार भी मिली। कई बार तो उसे लगा कि शायद वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन हर बार वो खुद से कहती, हार मानने वालों को कभी मंजिल नहीं मिला करती। और समय बीतता गया, जिला स्तरीय जीत हासिल करते हुए राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में उसकी टीम फाइनल में पहुंची। शानदार प्रदर्शन करते हुए निशा ने चौकों छक्कों की बरसात कर दी। फिर क्या था, निशा के तो फिर बढ़ते कदम बढ़ते ही जा रहे थे।

निशा की बल्लेबाजी देखकर दर्शकों की सांसें थम गई। मैच का अंतिम दौर चल रहा था, दो गेंदों में 5 रन चाहिए था। दर्शकों की उम्मीदें निशा पर टिकी थीं। तालियों की गूंज निशा के कानों तक पहुंच रही थी। आखिरी बॉल पर उसने शानदार जो है शॉट लगाया, बॉल सीमा रेखा से बाहर जा गिरी। सिक्सर, छक्का, टीम जीत गई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उसकी तस्वीर जो है वो अखबारों में छपी और टीवी चैनल जो थे उन्होंने उनका जो है निशा का इंटरव्यू लिया और इसी तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए वह धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। जब यह खबर गांव पहुंची तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
3: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
2: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
3: जी हाँ, और वो है योग।
2: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
3: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
2: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
3: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
2: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
4: योग करिए, निरोग रहिए।

0: और बहनों इसी गीत के साथ हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले नारी जगत कार्यक्रम में, तब तक के लिए पुष्पा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको।

0: ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
1: जी।
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
1: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
1: जी।
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार।
1: जी।
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी।
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके

पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडेचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियाँ लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: रामकृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था।

0: और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी।
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी।
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी।
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
2: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी।
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
2: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी।
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
2: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
2: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
2: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
2: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
2: जी।
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
2: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
2: जी।
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
2: जी हाँ।
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
2: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
2: जी। अब आप ये बताइए

0: कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो यह है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
0: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
0: जी,
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
0: जी हाँ,
1: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे, यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
0: जी बिल्कुल,
1: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,
4: घर के पास लगा था मेला,
3: उसमें आया चाचा।

मेले की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपने मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 101.9 मेगाहर्ट्ज FM बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। अब आइए एक बार पुनः आपको लिए चलते हैं केंद्रीकृत विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा हैं, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश है या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहाँ बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखने के बारे में हम समझ नहीं साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे। कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव। तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं। वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो

0: लाइक्स और फॉलोअर्स हैं, ये दिखावे से नहीं आती. आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारे लाइक मिले.
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
0: वो लाइक कितने बढ़ गए,
1: वो उसी में लगे रहते हैं.
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती. ये चीज हमें समझनी है आरती. और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं. क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं? इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है? बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है.
1: बिल्कुल. और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं. एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है. तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में. हम बहुत बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते?
0: बिल्कुल.
1: हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए.
0: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना इस तरह से, उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती. ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहाँ जाएंगे तब खुश होंगे, इसके ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं. लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रहे हैं,
1: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए. भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है.
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है. दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं. जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं. दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी होते हैं. कभी कभी गिर कर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है जो सच में हंसता था. लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े. ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं.
1: बिल्कुल. और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है. ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें. लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता. खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं.
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना.

0: बहुत मीठा बहुत सुरीला गीत हमने सुना और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना।
1: बिल्कुल, और वैसे भी चंचल अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें, क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए, जैसे कि हाँ हमें जो भी चीज है हम खुश है इसमें, वो चीज होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले की जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया की साइट्स हैं वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं, और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो

0: दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की
1: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है और यही सच्ची खुशी है।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
1: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहाँ वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है।
0: बिल्कुल
1: सही बात है।
0: बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
1: और भी संदेश है।
0: तो एक और जमाइश होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अभी तो उसके पोषक भी है, फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश है, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
1: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी है। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: पति हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने की, खुश रहने के बारे में, उसका दिखावा करने के बारे में, एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है। खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने। और इसी साथ एक और मैं श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूं, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूं, तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ नहीं हो रही, तो बस माचिस की तीली लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक।
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती हैं,
1: हेयर पिन, चाबी लेता, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक, ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना
0: जी,
1: जो हमारे कानों की होती है वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
0: देखो जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीजें हेयर पिन, इनका तो कभी ना करें।
1: आप इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीजें आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, पुराने जो होते हैं वो बड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीजें आप ना प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है कि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे, तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही,
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका

0: जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना
1: और
0: है।
1: सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, उसको बहुत जरूरी आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को, कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए। आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर बाद अपने दूसरे कान में लगाए, इससे क्या होता है ना, कान

0: में दूसरे कान में लगाए, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पर्दे पे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए कृपया करके, अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए। आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, अच्छे से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे, गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम, आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं आज। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम, मैं शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं इस शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना
1: जी? इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाए।
1: मैं साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द है
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही है, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिवीजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है मारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा, अच्छा तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: अरे तो क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर करता नहीं था, छोटे थे हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या
1: खेलने की बहुत चाहत थी, मेरे जिम्मेदारी साथ हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर के आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब
1: जी। और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है
1: जी जी।
0: पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं? आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल?
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, आंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: आंटी क्या होता है?
1: आंटी वगैरह खेलते हैं ना, आंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं उसको, मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा?
1: जी जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकर बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी।
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी, और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ मैम, किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी।
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको
1: आज? मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है किराना, वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, कबड्डी ये चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाय क्रिकेट ही ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाए तो उन्हें क्या याद आता है कि क्या वो खेला करते थे। हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, देसी क्रिकेट रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी तक अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी साधन का, लेकिन मैंने फिर ढाई महीने में छोड़ दिया, यानी दो महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में दसवीं पास करने लोगों के चले जमाना जैसा था, पहले से दसवीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे
1: मैंने कसम खाया था कि मैं दसवीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: आगे पढ़ना नहीं था दसवीं पास करके,
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए। तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: उदय आसम का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया, जो झुक गए आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात
1: है, कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का

0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्टकार्ड में अपना नाम पता भेज रही हैं पसंद का गाना?
1: भेजी है मैंने।
0: अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में, अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने के लिए देती थी दीदी।
0: क्यों?
1: लाड़ती थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपनी बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरी बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए, आपने पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम तो है खानदान, और गाने के बोल दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम नमस्कार, विविध भारती।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर में, बार्शी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं चालू करे ना तुम कार्यक्रम, एक बजे से दो बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, अच्छे कार्यक्रम है
0: वो। आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, मैं लिखा भी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: आगे बहुत पत्र लिखता हूँ।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: वो प्रिया प्रिया क्यों बोला गया, ये गीत सुनवाए मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसंतर बोल रहा हूँ। मैम
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे पास करे तो।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम, इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता नहीं।
0: अच्छा समय रहते घर पहुँच जाते हो?
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा इसे करते रहता हूँ, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान और दूसरा है।
0: और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाए मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहते हो, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लगी आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग का से आज बातचीत हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विवेक भारती से
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी?
1: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल है इसके बारे में बताइए तो क्या कहेंगे?
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियाँ हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है और कबड्डी न केवल उत्साह का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए?
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, सिमट करके रह गए हैं बच्चे। लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आस पास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाए।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते।

0: फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसमटारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय, कौन सी चाय, खुशबूदार पत्तियां?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है, तो बताइए। चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी, फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हैं फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।

0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चल रहा है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ, तो दीपक जी और क्या करते हैं इसके अलावा, कोई और शौक है आपके?
1: मैं खेती किसानी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो में क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री, तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है मेरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किस्से होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम।

0: खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: खेती घर में खेती देना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867028। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाए।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप और akashvani.gov.in पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुन रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। हमारे युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आदाब नमस्कार साथियों, कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त जीनत और आज के कार्यक्रम का सफर हम मिलकर तय करेंगे। क्यों? क्योंकि आज होगा युवा संवाद। दोस्तों, आज के तेजी से बदलते दौर में जहां तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं हमारी दिनचर्या पहले से अधिक व्यस्त और कम सक्रिय होती जा रही है। ऐसे समय में खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच और बेहतर व्यक्तित्व निर्माण का आधार बन गए हैं। तो आज के युवा संवाद में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर उम्र हर वर्ग से जुड़ा हुआ है, खेल हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो आप इस विषय पर क्या रखते हैं अपने विचार, जरूर कीजिए हमारे साथ साझा। डायल कर हमारा टेलीफोन नंबर 7376804090 यानी 7376804090। मित्रों, क्या खेल केवल मैदान तक सीमित है या जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी ज़रूरी है? क्या खेल युवाओं को तनाव से दूर रख सकते हैं? क्या खेलों को करियर के रूप में अपनाना आज के दौर में अच्छा विकल्प हो सकता है? क्या है आपके विचार, हमें बताइए। डायल कीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 7376804090। आज के युवा संवाद का हमारा विषय है खेल हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। श्रोताओं, आपने IPL के रोमांच का आनंद तो खूब लिया होगा। चौकों छक्कों की गूंज और आखिरी गेंद तक बने रहने वाले रोमांच ने हम सभी को उत्साहित किया। वहीं दुनिया भर के खेल प्रेमियों की निगाहें अब आने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों पर टिकी हुई हैं। और आइए देखते हैं हमारे साथ हमारे पहले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं। हेलो, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो, इनकी कॉल कट चुकी है। श्रोताओं, कोई बात नहीं, आप डायल करते रहिए, हमारा टेलीफोन नंबर है 7376804090। आइए देखें अगले कॉलर कौन है। हेलो, दोस्तों खेद है हमें, ये भी कॉल कट चुकी है, लेकिन आप निराश मत होइए, ट्राई करते रहिए, हमारा टेलीफोन नंबर 7376804090। और आज युवा संवाद में हम बात कर रहे हैं खेल की। आइए देखें हमारे अगले कॉलर कौन है।

0: अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? बहुत शोर है आपके आसपास।
1: हेलो,
0: हाँ अपना नाम बताइए।
1: हमारा नाम हीरा लाल है
0: जी। कहाँ से कॉल किया है आपने? अच्छा, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। आपने युवाणी में कॉल लगाया है और आज का हमारा विषय है खेल। आप खेल वगैरह खेलते थे बचपन में कि नहीं?
1: जी पहले तो ये आप बताइए, गाना यहाँ से सुनाई पड़ेगा? सुने हैं?
0: गाने के लिए तो और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। 9:30 बजे रात में आप कॉल कीजिए।
1: हाँ, 9:30 बजे हमने फोन किया, लगता नहीं गाने वाले।
0: 9:30 बजे रात को आप फोन कीजिए।
1: अच्छा जी,
0: यहाँ पर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? चलिए दोस्तों, गाने तो बजते ही रहते हैं लेकिन ये बात करने के लिए आपको प्रोग्राम होता है, तो आप बातें ज़रूर कीजिए हमारे साथ। हमें आपकी अगली कॉल का इंतज़ार है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज खेल की, और अभी कुछ ही दिनों पहले हमने IPL का लुफ्त उठाया और अब दुनिया फीफा वर्ल्ड कप की ओर आकर्षित हो रही है। आइए देखें हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो।
2: हाँ भाई।
0: हाँ, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं प्रेमनाथ तिवारी बोल रहा हूँ, नवाबगंज गोंडा से बोल रहा हूँ।
0: प्रेमनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
2: हम तो स्वस्थ हैं, मस्त हैं, रिटायर हैं, घर पे रहते हैं। आपसे कई बार जब भी आप मिलाते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, तो हम जरूर उठा के आपको अपना वो राय देते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी आप हमारे नियमित श्रोता हैं और नियमित तौर पर आप सहभागिता भी लेते हैं कार्यक्रम में। हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा। तो आज का जो हमारा विषय है वो खेलों से जुड़ा हुआ है, तो हमें ये बताइए कि खेल वगैरह आप बचपन में तो खेलते रहे होंगे। अभी आपसे
2: पहले तो बोल रहे हैं टॉपिक आपने दिया खेल पे। खेल तो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी खेल हो, जैसे कबड्डी हो, कुश्ती हो, क्रिकेट हो,
0: क्रिकेट हॉकी,
2: कोई भी खेल हो,
0: स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए हमें कि आजकल के बच्चे जो हैं वो आउटडोर गेम्स की जगह इनडोर में ही मोबाइल, टीवी, है ना, कंप्यूटर पे ही लगे रहते हैं गेम्स के लिए, तो आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: जैसे जैसे बच्चे का मन होगा वैसे वो जाएंगे, वैसे उनकी लाइफ बनेगी।
0: बिल्कुल सही बात है। पहले जैसे बच्चों को डांटा जाता था बाहर ज्यादा देर तक खेलने के लिए,
2: पहले सोच, जैसी सोच होगी, जैसी शिक्षा होगी वैसे आगे जाएंगे वो, नहीं तो ऐसे घूम के भीख मांगे हुए रोड पे खड़े होके जो माँ बाप की बनाई संपत्ति को भी बेच के खा जाएंगे।
0: तो बच्चों को हमें शिक्षा देनी चाहिए, सही शिष्टाचार सिखाना चाहिए और उनके सामने सही,
2: बच्चों को शिक्षा माँ बाप ही देते हैं ना।
0: बिल्कुल सही बात है, माँ बाप और वो आसपास किस संगति में है ये भी बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों के।
2: वही तो मैं भी कहने जा रहा हूँ, जिस संगत में उनके माता पिता होंगे, जैसे उनका संस्कार होगा
0: वैसे बच्चे करेंगे। तो हमें प्रेरित करना चाहिए अपने छोटे बच्चों को कि बाहर भी खेलो, ज्यादा टाइम घर पे ही मत लगे रहो, मोबाइल में ही मत लगे रहो,
2: खेलिए,
0: खेलने से टीम भावना भी विकसित होती है,
2: स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्वास्थ्य को भी बनाइए। क्रिकेट, कबड्डी, दंड बैठक ये सब खेले हैं।
0: बिल्कुल।
2: और आप जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा कहीं भी आप रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी, कोई भी रोग रोग नहीं आपके सामने आएगा,
0: स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
2: जाएगी। और नहीं तो अगर आप नीच विचारधारा के हुए, दारू शराब, अय्याशबाजी चले गए, गलत रास्ते चले गए, तो जिंदगी आपकी तो डिस्ट्रॉयड होने होना है, साथ ही साथ आपके बच्चे माँ बाप भी रोएंगे आपको देख कर कि मेरा बड़े मेरा बच्चा बर्बाद हो गया।
0: चलिए तो इसलिए प्रेमनाथ जी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और हमें उम्मीद है कि सुनने वाले इससे प्रेरणा जरूर लेंगे और ये काफी बड़ी बात है और काफी अच्छा प्रभाव इसका हमारे श्रोताओं पर पड़ेगा। और दोस्तों, युवा संवाद चल रहा है और आज के युवा संवाद का हमारा जो विषय है वो है खेल हमारे लिए कितने ज़रूरी, जैसे कि हमारे एक साथी ने अभी बताया हमें। आइए यहाँ देखते हैं हमारी अगली कॉल कौन है, कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: नाम पप्पू सोनकर है, वजीरगंज से बात कर रहे हैं।
0: पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवाणी कार्यक्रम में। आज युवा संवाद का हमारा जो विषय है वो है खेल हमारे लिए कितने जरूरी हैं।

0: तो मैच वगैरह देखते खेलते हैं?
1: अरे मैम पहले तो हम मैच बहुत खेलते थे.
0: अच्छा,
1: बचपन में.
0: और अब क्या हुआ?
1: और पहले गुल्ली डंडा है, छुआन है, और क्या नाम है ये सिकड़ी है,
0: पकड़म पकड़ाई, खो खो, ये सब भी खेलते थे.
1: पहले
0: तो ये सारे गेम आप पप्पू जी अभी देखिए तो जैसे विलुप्त तो होते जा रहे हो. आजकल के बच्चे तो बस मोबाइल पा जाते हैं, उसी में लगे रहते हैं, और ये सारा वातावरण ही जैसे चला गया हो कि बच्चे शाम को निकलते थे, खेलते कूदते थे, आवाजें आती थी, किसी का सीसा फूटता था, कहीं बॉल चली जाती थी.
1: जी जी जी जी.
0: तो ऐसे
1: बॉल चली जाते थे और उसको लाने जाओ तुम लेके आओ, और उसके तो एक दो लोग जाते थे, बॉल कहाँ गई.
0: तो आजकल
1: पहले की जो बातें थी अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो गई है, मगर कुछ बच्चों में धीरे धीरे अब आ रहा है. कहीं कहीं लोग गुल्ली डंडा खेलने गेम से गया, कहीं कहीं मैच भी खेल रहे हैं. तो बच्चे कभी धूप में चले जाते हैं, हमारे भी दो बच्चे हैं. तो
0: आप उन बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं कि बाहर जाकर खेलो, घर में ही नहीं?
1: तो जैसे टाइम से खेले, जैसे 4 बजे मतलब जब धूप कम हो जाए, जैसे कहीं बच्चे अगर इकट्ठे हों मैच खेल रहे हैं तो जाके खेले, मगर जैसे ज्यादा धूप हो तो निकलने नहीं देते हैं.
0: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है अभिभावक के तौर पर भी कि हम उनकी जिम्मेदारी को समझें और ये भी देखें कि हाँ अधिक तेज धूप में बच्चा ना खेले, और ये भी नहीं कि बहुत उग्र होकर खेले, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो बच्चों में उग्रता लेकर आ रहे हैं.
1: समझाते बेटा मोबाइल एक जैसे क्या है गेम है, तो कभी कदार खेलो और पढ़ाई भी ध्यान दो, हर चीज करो मगर टाइम से.
0: और बच्चों के साथ जब बच्चे ऐसे खेलेंगे तो उनके अंदर टीम भावना विकसित होगी, एक दूसरे की मदद करेंगे, वो एक दूसरे से घुले मिलेंगे, तो ये जरूरी है. अच्छा लगा ये जानकर कि आप अभिभावक के तौर पर अपने बच्चों को इस तरह से देते हैं प्रेरणा, प्रेरित करते हैं उन्हें कि वो बाहर जाकर खेलें. और कुछ हमारे श्रोताओं को आप कुछ कहना चाहें तो?
1: मैं नहीं कहना चाहते हैं कि मतलब हर बच्चे को मतलब टाइम दिया जाए और उसको मतलब ज्यादा
0: खेलने के लिए वातावरण दिया जाए, और सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी. पप्पू जी बड़ों को भी,
1: हाँ बड़े भी मतलब टाइम से अपना काम करें और समय का थोड़ा ध्यान दें. और क्या कहेंगे मैम.
0: चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई. हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता साथी इससे जरूर सीखेंगे. दोस्तों बात कर रहे हैं युवा संवाद में आज हम कि खेल हमारे लिए कितने जरूरी हैं, और आइए देखें हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो.
2: हेलो,
0: अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं.
2: स्टेडियम.
0: हाँ, अपना नाम एक बार फिर से बताइए, आपकी आवाज कट रही है.
2: सुशील
0: दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवाणी कार्यक्रम में. कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए.
2: स्टेडियम के बगल से.
0: अरे वाह, आपके घर के पास स्टेडियम है ये. हाँ
2: जी.
0: तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा खेल से ही जुड़ा हुआ है कि खेल हमारे जीवन में कितने जरूरी हैं. तो कभी आपने उस स्टेडियम में भ्रमण किया है?
2: सुबह शाम
0: तो खेलने के लिए जाते हैं, बच्चों को खेलते देखते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बचपन के दिन याद आते हैं?
2: मन प्रफुल्लित होता है, बचपन के दिन तो याद आते ही हैं.
0: तो आप नहीं कभी शामिल हो जाते हैं उनकी टीम में जाकर कि हमें भी खिलाओ, हम भी आओ खेलते हैं साथ में?
2: नहीं, परिस्थिति ऐसी नहीं. अच्छा, लेते हैं.
0: चलिए कोई बात नहीं, परिस्थिति ऐसी नहीं है, पर सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और उम्मीद बनाए रखिए. वैसे करते क्या हैं आप?
2: इलेक्ट्रीशियन है.
0: तो आसपास जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आज 11 जून है, विश्व खेल दिवस भी है, इसलिए इसका टॉपिक हम लोगों ने रखा हुआ है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: हमारा ये संदेश है कि ऐसे बराबर जुड़े रहे, स्वास्थ्य ठीक रहता है.
0: स्वास्थ्य ठीक रहता है, और कई बार ऐसा होता है ना कि हम कई सारे तनाव को ले लेते हैं अपने ऊपर, तो खेलने से हमारा स्ट्रेस भी जो होता है. अच्छा, तो झगड़ा हो गया था आपका. चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही हम टीम भावना भी सीखते हैं, और एक साथ रहने की भावना भी इस तरह से विकसित होती है. तो सुशील जी, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं, और निराश बिल्कुल मत होइए, जीवन में कुछ ना कुछ जरूर होगा, और उसके

0: और हम आपको यही बोलना चाहेंगे, बिल्कुल आशा ही जीवन का लक्ष्य होता है, और खेलों से आप भी जुड़िए, खेलिए और अपना स्ट्रेस कम कीजिए और सब कुछ अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, चल रहा है कार्यक्रम में युवा संवाद, जिसमें आज का हमारा विषय है खेल हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। हम जल्द लौटेंगे वापस आपकी फोन कॉल्स के साथ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: और भाई साहब क्या हाल है
3: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
2: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
3: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है सभी का युवाणी कार्यक्रम में दोस्तों, और जहां चल रहा है युवा संवाद, आप भी बन सकते हैं हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। डायल कर हमारा टेलीफोन नंबर 7376804090, और आज का विषय है हमारा खेल हमारे लिए कितने जरूरी हैं। और आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं। हेलो, अपना नाम बताइए। श्रोताओं, इनकी कॉल कट चुकी है, हमें खेद होगा, पर आप डायल करते रहिए हमारा टेलीफोन नंबर 7376804090। आइए देखें अगले कॉलर कौन है। हेलो, अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं?
4: मैम रेनू प्रजापति बोल रहे हैं, बस्ती से।
0: रेनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं?
4: मैम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसी हैं?
0: चलिए, हम भी बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात करके हमेशा अच्छे हो जाते हैं। आज का टॉपिक पता है आपको?
4: जी मैम, खेल से रिलेटेड है।
0: हाँ, तो खेल से रिलेटेड है, तो ये बताइए खेलती वेलती हैं कुछ आप?
4: नहीं मैम, खेलते नहीं है लेकिन खेलते थे।
0: कौन कौन से खेल आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
4: कबड्डी और खो खो और दौड़
0: लगाना। तो याद है आपको कि लास्ट टाइम आपने कब खेला था?
4: हाँ मैम, अभी हमारे कॉलेज में है, तो जब खेल प्रतियोगिता होती है साल में एक बार तो खेलते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं खेलते, बस साल में एक बार प्रतिभाग करते हैं तो खेलते हैं।
0: प्रतिभाग
4: और खेलना अच्छा लगता है मैम। और स्कूल के टाइम पे तो हफ्ता में दो दिन हम लोग का प्ले डे होता था, तो उसमें जो है एक घंटे तो हम लोग को खिलवाया जाता था स्कूल पर, तो खेलते थे।
0: खेलती थी और
4: अभी तो कम हो गया है।
0: अभी कम हो गया है, तो अभी जब आसपास बच्चों को खेलते देखते हैं तो मन नहीं करता आपका कि हम भी शामिल हो जाएं?
4: मन करता है मैम, और मन करता है तो खेल भी लेते हैं। हमारे गांव में जो है बहुत बच्चे हैं, थोड़ा और जैसे सिस्टर भी हैं, भाई भी हैं, सब लोग कभी कभी साथ में खेलते हैं। तो गांव में जैसे बहुत दूर तक रहते, गांव में जैसे छुपन छुपाई हो गया खेल लेते हैं, कभी
0: ऊंच नीच खेलते हैं,
4: खेल लेते हैं,
0: है ना। गांव में तो खेल का और ही अलग ही आनंद होता है।
4: नहीं नहीं, खेलते मतलब गांव में अंदर खेलते हैं, पूरे गांव में घूम लेते हैं इसी बहाने से। अगर कोई मतलब छुपन छुपाई हो जाता है तो उसमें
0: तो उसमें कोई छुपने की
4: है, उनको देखते हैं वो तो मतलब परेशान हो जाते हैं ढूंढते ढूंढते।
0: महाज, कोई सीमा नहीं निर्धारित होती है ना, कहीं भी छुप जाओ, पूरा गांव ही अपना होता है। और रेनू जी बताइए कि आजकल जो युवा हैं हमारे, वो खेलों को टीवी पर तो देखते हैं, जब टीम जीतती है तो जश्न भी मनाते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में, असल जिंदगी में वो कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी?
4: मैम खेलना बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हमें लाभ होता है, और खेल को अपने जीवन में जरूर इंक्लूड करना चाहिए और टाइम निकाल के मैम खेलना चाहिए। इससे जो है हमारे शरीर मजबूत होता है,

0: हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं खेलने से।
1: बिल्कुल,
0: और हर प्रकार का व्यायाम हो जाता है मैम खेलने से।
1: बिल्कुल, उठक बैठक सारी चीजें इसमें हो जाती हैं खेलते खेलते, और पता भी नहीं चलता। चलिए रेणु जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और कुछ कहना चाहेंगी?
0: नहीं, बस यही कहेंगी मैम, टॉपिक अच्छा है आज का, और खेलना चाहिए अपने जीवन में, खेल को जरूर शामिल करें, टाइम निकाल के खेले। और वैसे तो व्यस्तता, आजकल लोगों के जीवन में बहुत व्यस्तता हो गई है, लेकिन समय निकालना चाहिए, उससे तनाव जो है, तनाव से छुटकारा पाया जा सकता है खेल के माध्यम से।
1: बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही। चलिए रेणु जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। साथियों, ये थी हमारी दोस्त रेणु, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। आप भी बन सकते हैं हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। आइए देखें हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, अपना नाम बताइए। साथियों, किन्हीं कारणों से इनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपसे निवेदन है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो एक शांत माहौल में जाकर रेडियो बंद कर कर, आवाज उसकी धीमी कर कर हमसे बात करें। हेलो
2: जी, जी रुपेश बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत टिपरी नवाबगंज गोंडा से।
1: रुपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं?
2: बिल्कुल ठीक ठाक,
1: बढ़िया चल रहा है सब कुछ। चलिए रुपेश जी, आज हमें बता दीजिए कि कोई खेल आपको पसंद है जो आप खेलते हो अभी?
2: क्रिकेट।
1: क्रिकेट, क्रिकेट का खुमार तो अभी सब पे छाया हुआ था, आईपीएल चल रहा था।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आईपीएल चल रहा था, विराट कोहली जी की टीम जीत गई है।
1: चलिए जी हाँ, आरसीबी ने जीता है ये खिताब। तो हमें ये बताइए कि जब आप खेल देखते हैं, है ना, तो आपको हार जीत जब उसमें होती है तो इससे आप क्या सीखते हैं?
2: जानते हैं, जब हम लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं ना, एक तरफ अंदर भी चल रहा होता है, तो उसको टोटल करते रहते हैं ना, इतने ओवर में इतना टारगेट अचीव करना है, तो वो टोटल दिमाग में
1: बिल्कुल, और टीम भावना भी विकसित होती है साथ में, क्योंकि इसमें तो देखिए कई देशों के खिलाड़ी आकर एक साथ खेलते हैं।
2: बिल्कुल जी, कोई कितना भी पौष्टिक चीज को खा ले, वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि तो क्या होगा ना, फैट जमा हो, फिर वो मतलब बैक फायर जिसको कहा जाता है, अब उससे परेशानी होगी, क्या मोटी जी खा रहे हैं।
1: रुपेश जी, आपकी आवाज थोड़ी कट कट कर आ रही है हमें।
2: आप मिल रही होगी?
1: हाँ अभी आई सही से, बोलिए।
2: जी जी, ये कह रहे हैं कि कोई कितना भी पौष्टिक चीजें खा ले, लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं, मतलब नहीं होता है, क्योंकि
1: हमारी
2: नहीं करेंगे, पौष्टिक चीजें आप खाते रहेंगे तो उल्टा असर करने लगेगी, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी ना, क्योंकि फैट जमा करते चले जाएंगे आप।
1: बिल्कुल, तो स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम खेलों से अपना नाता जोड़ें।
2: बिल्कुल बिल्कुल जी, नहीं जी बिल्कुल,
1: और खेल हमें चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं, साथ में हमारा स्ट्रेस भी दूर करते हैं।
2: हाँ हाँ, जितना देर तक हम गेम में बने रहते हैं ना, तो लाइफ का जितना स्ट्रेस रहता है वो तो साथ में नहीं रहता है ना, इसका 100% कम होता है।
1: चलिए रुपेश जी,
2: एक से सामूहिक प्रयास करके किसी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये भी एक क्वालिटी लोगों के अंदर डेवलप होती है, अगर आप
1: खेल खेलते हैं तो। बिल्कुल,
2: संगठित होके किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, उसको प्लान करना, लीडरशिप, इस तरह की डेवलप होती है।
1: बिल्कुल रुपेश जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और आज विश्व खेल दिवस भी है, तो इस अवसर पर यदि आप कुछ कहना चाहें तो।
2: यही कहना चाहेंगे कि लोग फिजिकल एक्टिविटी में बने रहें, अगर खेलना जो भी उनका मनपसंद खेल है उसको खेलें, और नहीं तो कम से कम दौड़ना ही शुरू करें, दौड़ ही लगाना शुरू करें, नहीं कर पाते हैं तो, क्योंकि जानते हैं जब हमारा समाज स्वस्थ रहेगा ना, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे, इसलिए पहले तो क्या है ना कि हम लोगों की सेहत ठीक होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: बाकी चीजें बाद में,
1: पहला धन निरोगी काया। चलिए रुपेश जी,
2: दूसरा धन हाथ में माया।
1: चलिए रुपेश जी, आप
2: जी, तीसरा धन अज्ञाकारी पत्नी, और चौथा धन अज्ञाकारी पुत्र।
1: बिल्कुल, चलिए आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथी रूपेश, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें हमें बताई खेल के बारे में। आप भी अपने

0: विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं डायल करके हमारा टेलीफोन नंबर 7376-4090। चल रहा है युवा संवाद, जिसमें आज का हमारा विषय है खेल हमारे लिए कितने जरूरी हैं। साथियों, खेल सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देते हैं, टीम के साथ खेलते। आइए देखें हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं इसी बीच। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं।
1: अरे मैं सतीश बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: सतीश जी ने फरुखाबाद से हमें कॉल लगाई है।
1: जी जी, धन्यवाद मैडम जी, और मेरे को रिसीव भी बहुत अच्छा लगता है। आज टॉपिक है खेल, खेल खेल के ऊपर टॉपिक। जैसे मैंने पहले छोटे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे भी खेलते थे, और चोर सिपाही वाला गेम खेलते थे, चोर सिपाही वाला खेलते थे, डिक्का मिट्टी खेलते थे, और पेड़ पे चढ़ते थे, सब बहुत खेल होता है,
0: पकड़म पकड़ाई खेलते थे, खो खो खेलते,
1: चढ़ जाते थे पेड़ पे, ऐसे खेल खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था। और सत्तावना है, और जो चोर सिपाही वाला गेम तो घर में खेलते थे, कच्ची वाला।
0: बिल्कुल, ये सारे खेल जो रहते थे हमें आपस में जोड़े भी रहते थे, और साथ में हमारी शरीर जो है वो हमारा शरीर सक्रिय भी रहता था।
1: और जैसे मामा मामा घर पे आते थे, बचपन में छोटे पे साइकिल लेके जाते थे तो सीखने जाते थे, तो सीखते थे तो साइकिल खराब हो जाती तो मेरी बहुत डांट पड़ती थी, मार भी होती थी। तो
0: बहुत सारे खेल हम ऐसे आपस में बना लेते
1: बचपन में, और खेल भी बहुत खेले थे, और गिल्ली डंडा भी खेलते थे।
0: चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा।
1: तो आप मेरे घर लड़कियां थी तो मेरी सत्तावना खेलती थी, डिक्का मिट्टी खेलती थी, तो हमें सब लड़कियां लड़कियां सब साथ में खेलती थी।
0: बिल्कुल, और अब तो और भी लड़की लड़कियां जो हैं साथ में मिलकर भारत का परचम खेल में लहरा रहे हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम खेल हमारे जीवन में कितने जरूरी हैं। आप भी बन सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा डायल करके 7376-4090। दोस्तों, खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, खेल हमें स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच, अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का पाठ पढ़ाते हैं। और आइए देख लेते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैं।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
2: महेश प्रताप।
0: महेश जी, कहाँ से कॉल लगाई है आपने हमें।
2: हम ग्राम भीखनपुर से, पोस्ट गोपालपुर, थाना कैंट, जिला अयोध्या।
0: चलिए, बहुत स्वागत है आपका युवाणी कार्यक्रम में, और आज का जो हमारा विषय है युवा संवाद का वो है खेल हमारे जीवन में कितने जरूरी हैं। तो खेलों से आपका कोई नाता है।
2: अब उम्र तो हो गई है ज्यादा, अब खेल से नाता तो नहीं है, मगर क्या है कि खेल देखने का नाता है।
0: अच्छा,
2: हाँ,
0: कौन सा खेल देखना आपको पसंद है।
2: सारे खेल है जो बच्चों का खेल, जिससे छोटेपन से होता है, जो
0: बच्चे खेलते
2: हैं लोग, स्कूलों में भी बताया जाता है खेल खेलने के लिए। और क्या है, अपने मन से जब छुट्टियां होती हैं, क्लास छूट जाता है, तो शाम के टाइम भी खेल लोग बच्चे खेलते रहते हैं, उनको भी देखने में अच्छा लगता है। और बच्चे तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं, जैसे गिल्ली डंडा है, कंचा है, और क्या है कि
0: चलिए इन सबको देखते हुए आपको पुराने दिन अपने याद आ जाते होंगे। हमें आपसे और भी बातें करनी थी, लेकिन दोस्त हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देंगे। श्रोता साथियों, खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच और बेहतर व्यक्तित्व की पहचान है। आज के युवा संवाद में आपने अपने विचारों को इस चर्चा को सार्थक बनाया, और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का समय हो गया है। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि कल युववाणी कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की। स्थान सेगमेंट में जानेंगे गंगटोक को, और शब्दावली सेगमेंट भी होगा कल, तो जरूर सुनिएगा। फिलहाल आज के युवाणी कार्यक्रम से मैं जीनत आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए। नमस्कार।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
6: जी हाँ, यही तो है हम सब का आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अप...

0: कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।

0: नमस्कार, ये हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी FM बैंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। शाम के 5:31 हो चुके हैं। पेश है लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: हे रे पपिहरा।
0: कार्यक्रम लोक संगीत में आप सभी का स्वागत है। ये पहली आवाज है इस गाने में अरविंद मौर्य और साथियों की।

आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

0: delhi-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कार्यक्रम लोक संगीत में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं रत्नेश द्विवेदी और साथियों के स्वर में ये साक्षरता गीत।

0: आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक, तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन, बिना दर्द, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 9161877347।
3: कार्यक्रम लोक संगीत में आपका फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए मालिनी अवस्थी और सखियों के स्वर में ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशारानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ, लोक संगीत का एक और कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। अब इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। FM 101.9 MHz पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। 6:00 को है हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।

शाम के 6:10 में हैं। पेश है फिल्मी गीतों का प्रोग्राम शाम सुहानी। प्रोग्राम शाम सुहानी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं सुखविंदर सिंह की आवाज में बॉर्डर 2 का ये गाना। गीत और संगीत मिथुन का है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रोग्राम शाम सुहानी में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनवाते हैं आपको मधुबंटी बख्शी और जावेद अली की आवाज में फिल्म ओ रोमियो।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी आपने सुना आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 101.9 MHz और न्यूज ऑन एयर ऐप पर। शाम के 6:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: पारस्परिक सहयोगः संवादः विचाराणाम् आदान प्रदानम् आवश्यकं भवेत् विषयेस्मिन् नीत्यायोगः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वाहयति नीति आयोगस्य सहयोगेन सर्वेषां राज्याणां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मध्ये विचार विनिमयः सम्यक् भवेत् विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति बलमपि वर्धिष्यति सभायामस्यां देशे कौशल विकासस्य संवर्धनं वृत्त्यवसराणि अपि वर्धयिष्यन्ति वर्षस्य अस्य विषयो विद्यते सप्तचत्वारिंशदुत्तर द्विसहस्रतम वर्ष पर्यन्तं विकसित भारताय समावेशी मानव विकासः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति प्रवर्तन निदेशालयेन आंध्र प्रदेश राज्य मद्य पदार्थ निगम लिमिटेड इत्यस्य कथिते परिवहन प्रवञ्चना कांडे हैदराबादे पंच स्थलेषु सहसा अन्वेषणं कृतम् प्रवर्तन निदेशालयस्य अधिकारिणः कथयन्ति यत् आरोपिजनाः शासकीय कोषात् पञ्चनवत्यधिक कोटि रूप्यकाणां वित्तहरणं कृतवन्तः तथा च स्व सहयोगिनां कृते अवैध लाभाः अर्जिताः भारतेन प्रतिरक्षण व्याप्तिं सुदृढं कर्तुं सार्वजनिक स्वास्थ्यस्य रक्षणार्थं च प्रयत्नान् समर्थयितुं मालदीव देशं प्रति 20,000 यावत् खसरा सूच्यौषधीनां प्रायः 3 टन चिकित्सा सामग्रीं च प्रेषितम् विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् एतत् सहयोगं द्वीपराष्ट्रे वर्धमानानां खसरा प्रकरणानां निवारणे सहायं करिष्यति तथा च मालदीव्स सर्वकारस्य प्रतिक्रिया उपायान् सुदृढं करिष्यति इति तस्य नेबरहुड फर्स्ट विजन महासागर इत्येतयोः अन्तर्गतं भारतं मालदीव्स देशेन सह संयुक्त प्राथमिकतासु निकटतया कार्यं कर्तुं प्रतिबद्धम् अस्ति सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य राजस्थाने जैसलमेर जनपदे रामगढ़े 20 किलोवाट क्षमतायुतस्य एफएम प्रेषकस्य आभासीय उद्घाटनम् अकरोत् जयपुरस्थे आकाशवाणी परिसरे समायोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे उद्घाटन कार्यमिदं सम्पन्नम् अनेन सह राज्ये एफएम प्रेषकाणां संख्या विवर्ध्य 49 जाता नूतनः प्रेषकः सीमावर्ति क्षेत्रेषु 80 किलोमीटर परिमिते क्षेत्र रेडियो प्रसारणस्य आवरणं प्रदास्यति एतेन जनाः विविधाः सूचनाः शैक्षिक सामग्र्यः प्राप्तुं शक्नुवन्ति सभां सम्बोधयन् श्री वैष्णवः अवदत् यत् देशस्य सीमाक्षेत्रेषु कश्मीरतः कच्छ पर्यन्तम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः प्रसारणसेवायाः विशिष्टाः लाभाः प्राप्स्यन्ते
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है अपना खुद का वेव्स ओटीटी है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें लोकल आर्ट लोकल संस्कृति लोकल खान पान को लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए अगले 1,000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें आपको पूरा फ्रीडम है जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी पॉलिसी बनाने वाले आप इम्प्लीमेंट करने वाले आप
0: प्रशासनेन एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पाद शुल्कम् अपसारितम् वित्त मंत्रालयेन एकया अधिसूचनया प्रकाशितम् यत् 20%-30% एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादं केंद्रीय उत्पाद शुल्क श्रेण्यात् पूर्णतया विमुक्तम् मंत्रालयेन उक्तं यत् अस्य शैथिल्यस्य उद्देश्यं भारतीय एथोनॉल मिश्रण कार्यक्रमं सुदृढीकरणमस्ति 26,000-2,000 वर्षस्य फीफा विश्व चषक क्रीडायाः आरम्भः अद्य रात्रौ मेक्सिको नगरस्य ऐतिहासिके एस्टाडियो एर्जेटेका क्रीड़ा गृहे आरभ्यते इति वार्ताः

0: दोनों भी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से FM बैंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप हमारे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। शाम के 6:30:22 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजेश्वर गांव के।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240042 और 7800037222।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
0: कार्यक्रम गूंजेश्वर गांव में आप सभी का स्वागत है। प्यारी सी आवाज है शंकर यादव और साथियों की इस पहले गीत में, लीजिए सुनिए।
3: अरे झां के ली दुवरिया की पिया मोर आवत हुई है कि सैया मोर आवत हुई है। अरे लूटे बदे

0: है,
1: सोच रही है।
0: अम्मा की मोजरा से दयो दयो, अम्मा की मोजरा से झाके लाठी को रवा, बहे पुरु वैया तो, हे बहे पुरु वैया तो, फरके मुर अचारवा, फरके मुर अचारवा, बहे पुरु
1: कर रही है
2: क्या?
0: अरे सगुना मनावे रे दैया,
1: कह रही है
0: सगुना मनावे हमरे, अरे मथवा के बिंदिया की रज मोर आवत हुई है,
1: रह रहे गिर जा रहे सरिया,
0: सगुना बतावे हमरे मथवा के बिंदिया की पिया मोर आवत हुई है, वो पिया मोर आवत हुई है।

0: ए भैया क्या कर रही है?
1: खन क्या कंगनवा मोरो, खन क्या कंगनवा मोरा बाज पाया जानिया,
2: खन क्या कंगनवा।

0: कि राजा मोर, ये राजा मोर आवत हुई है, ये राजा मोर आवत हुई है। अरे लूटे बाद फागुनी के बाया है पिया मोर,
1: लूटे बाद फागुनी के बाया मोर आवत हुई है।
0: आखिर बोले उई उई कागा बोले, अरे जब जब अंगनवा जियरा में लागे जैसे आइले मोर सजान।

0: फरह सिंगार कह के, अरे जो फरह सिंगार कह के, अरे बैठल बा अंगनवा की पिया मोर, हे पिया मोर
1: बैठल बा
0: अंगनवा की पिया मोर आवत हुई है, हे पिया मोर आवत हुई है।
1: तो बिहसी के, अरे बिहसी के।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
5: कार्यक्रम लोक संगीत में आपका फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम है गूंजे स्वर गांव के। आइए सुनते हैं रत्नेश द्विवेदी और साथियों के स्वर में दादरा।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। शाम के 6:45 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: पंचो जय हिंद।
7: राम भैया
8: जी,
7: भाई देखो आज बृहस्पतिवार हुआ है, अपन किसान हेल्पलाइन फोन इन सजीव फोन इन कार्यक्रम शुरू होगा और पंच फोन कई के सीधे हमारे डॉक्टर भैया से संपर्क अपने समस्या के समाधान कर सकते हैं।
8: यह नंबर पे कौन है, 73-76-80-40-90 पे।
7: लेकिन विषय अपने पंचन का बता दें जाए, जो आज अपन विषय है बागों एवं सब्जियों के फसलों में कीट एवं रोगों से सुरक्षा।
8: अपन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम गोपाल भैया, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ पादप सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से यहाँ, इनसे पंच भैया अब से लेके 7:15 तक यानी आधा घंटा तक अपन प्रश्न पूछ सकते कि उनका सब्जियन में अपने जो नेसाइड बगिया लगाया है ओमा कौन कौन कीट लागत है, कौन रोग है, ओके बचाओ कैसे कह सकते। तो सबसे पहले तो राम गोपाल भैया आपका मूल पंचायत में स्वागत है। अब आपसे सबसे पहले हम जानना चाहते ना, यह विषय तो बतियावे करब, यह सहित सरकार के एक मंशा है खेती बचाओ अभियान बहुत तेज चलता है कि नहीं।
9: सभी पंचों को नमस्कार। जैसा कि आपने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाई जो अधाधुंध खेती में जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और तमाम प्रकार की जो दवाइयों का इस्तेमाल करके जो खेती का एक पैटर्न बना दिए हैं
8: जी,
9: उस खेती में आजकल सभी किसान भाई केवल फर्टिलाइजर बेस्ड खेती पर निर्भर कर रहे हैं।
8: बिल्कुल, आप तो किसानों को पादप सुरक्षा से, तो सबसे पहले बताओ कुछ नुकसान का क्या है पंच का?
9: नुकसान ये होता है कि अगर ज्यादा मात्रा में खेती में अगर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है या केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है
8: तो जो उर्वरक
7: जी,
9: तो इससे क्या है कि किसानों को जो आमदनी है वो उपज में तो खैर थोड़ा सा उनको लगता है कि हमारी बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। वो जमीन को अपनी ऊसर बंजर बनाते जा रहे हैं
7: जी।
9: जो पहले से केचुए होते थे किसानों के खेत में, आज जिन्हें केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता था, मित्र तो खत्म ही हो गए, अब हम खुद शत्रु बन चुके हैं।
7: बिल्कुल।
9: तो खेती में अगर हमको उसको बचाना है तो हमें खास करके केमिकल बेस्ड खेती को छोड़ करके
8: बिल्कुल आगे बढ़ी थी। जैसे पहले पंच भैया कौन है?
7: हेलो हेलो, हाँ भैया
8: स्पीकर ऑन किया का
7: भैया? बाजा पाछे रखा है तब बात हुई पाए डॉक्टर भैया से।
8: बढ़िया है, बताओ
7: भैया अपन नाम बताओ कहाँ से बोलत है। हेलो भैया, अपन बाजा पाछे रखो, बाजा से दूर हो जाओ भैया। हेलो हाँ भैया, अपन नाम बताओ कहाँ से बोलत है।
10: मेरा नाम सुरजीत विश्वकर्मा है।
7: विश्वकर्मा भैया कहाँ से बोला था?
10: उछापाली।
7: अच्छा,
10: अयोध्या जिला।

0: बिल्कुल आपको डॉक्टर भैया से पूछ
1: लगे का हो छापाली
2: तहसील मिल्कीपुर।
1: हाँ मिल्कीपुर में बिल्कुल बहुत सही कहें। तो क्या समस्या है प्रश्न पूछे।
2: अरे ये मक्के के खेत में जो है बाली में गदेला बहुत अधिक लगते हैं।
3: जी जी आपका
2: बाली जो है खाली पड़ जाती है।
3: अच्छा तो मक्के में मक्का कितने दिन का लगभग हो गया है।
2: मक्का तो ऐसे तैयार होने वाला है।
3: अच्छा बाल निकल रही है।
2: हाँ
1: नहीं ऐसे तो दाना पड़ गया।
3: अगर दाना पड़ गया है उसमें बाल अगर शुरुआती दौर में अगर निकलता है और उस समय आपको अगर उसकी जो बाल होती है अगर मुरझाई हुई आपकी ब्लैक कलर की हो रही है तो उसी समय आप या तो उसमें एमडा क्लोरोपिट का 2% का घोल बना करके उसमें छिड़काव करिए और एक फंजीसाइड अगर आप हो सके तो इस समय अगर करते हैं। चूंकि दाना अगर पड़ जाता है तो उसके बाद आपका दवाई छिड़कने का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि अब जब दुधा अवस्था में रहता है दाना तो उस समय आप एमडा क्लोरोपिट या क्लोरोपाइरीफास चूंकि एमडा क्लोरोपिट से इसका जो गर्मी में होता है खास करके इसका अगर हम 2% का घोल बना करके 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप इसमें छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। चूंकि गदेला जो होता है ये बताइए
2: एक समस्या ये है कि हमारे खेत में जो है कि टाणा बहुत अधिक लगते हैं।
3: टाणा मतलब
2: अरे ये दीमक वगैरह।
3: अच्छा अच्छा
0: जो धान के नीचे जरीम लग जाता है।
3: दीमक के लिए तो अभी तो आप खेत का जुताई कर दिए कि नहीं।
2: जुताई हो गई है।
3: गर्मी की जो जुताई होती है उसको मिट्टी पलट हल से गहरी एक बार करने के बाद खेत को पाटा ना दें उसको खुला छोड़ दें। उसको कम से कम 10 से 15 दिन आप खुला छोड़ दीजिए और उसमें अगर बारिश हो जाती है तो उसको फिर से जुताई करके उसको खुला छोड़ देंगे। तो होता क्या है कि जो गर्मी इस समय टेम्परेचर जो 40-42 डिग्री जाता है उससे ज़्यादातर आपके दीमक जो कीट पतंगे होते हैं वो उससे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर जब हम उसकी धान की रोपाई करते हैं उस समय आप फोरेट का इस्तेमाल करें। आप 1 acre में कम से कम 1 to 2 kg आप फोरेट का छिड़काव कर देंगे और उसके बाद धान की रोपाई कर देंगे तो जो धान की जड़ में लगने वाला दीमक है वो आपका नष्ट हो जाएगा।
2: ठीक ठीक ओके धन्यवाद
0: जी डॉक्टर भैया इनके समस्या का समाधान हो गया। लेकिन अपने सब बत कहीं कीन जाता है कि जो उर्वरक है एक कम मात्रा में डारी आपन बंजर हो चली जाती है।
3: इसके लिए क्या है कि जो उर्वरक ज्यादा प्रयोग करते हैं हम लोग अब खेती बचाओ अभियान के तहत इस समय पूरे भारत में ये कार्यक्रम कृषि विज्ञान और कृषि विभाग के माध्यम से सारे अलाइनमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें किसानों को बेसिकली जो जैविक खेती हम लोग पहले करते चले आ रहे थे उसमें हम जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती दोनों को एक साथ मिला करके उसको करने के लिए हम सलाह देते हैं। दूसरी चीज किसान आजकल अपने खेत में जीवाश्म की मात्रा को कम कर दे रहा क्योंकि फर्टिलाइजर यूज करेगा यूरिया डायरेक्ट यूज करता उसके लिए हम लोग ज्यादातर ग्रीन मैन्योरिंग जिसे हम ढैंचा हरी खाद के रूप में बोलते हैं उसको हम सनाई ढैंचा के रूप में अगर गर्मियों में खास करके जैसे ही गेहूं की फसल कटती है उसके 5 to 10 days के बाद तुरंत जुताई करके उस खेत में अगर हम बुआई कर देते हैं तो 55 days में ये ढैंचा तैयार हो जाता है। हर किसान भाइयों के लिए हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार इस समय हर किसान के लिए ढैंचा फ्री में कृषि विभाग के माध्यम से मिनी किट के रूप में उपलब्ध करा रहा
1: है। बिल्कुल आगे बढ़िए से पहले पंच का फोन है।
0: हेलो हेलो हाँ भैया अपन नाम बताओ मैं कहाँ से बोला था।
4: मिठूलाल जिला बस्ती से बोल रहा हूँ।
0: मिठूलाल भैया बताओ अपन समस्या क्या है डॉक्टर भैया सुना था।
4: समस्या साहब ये है कि हम बेरन डाले है बेरन हमारा पीलापन हो जा रहा है।
3: पानी की मात्रा ज्यादा लगा रहे हैं क्या।
4: नहीं पानी बहुत कम लगा है।
3: कम आप
4: पानी नहीं रुकता उसमें पानी हम निकाल देते हैं सब लेकिन सारा बेरन एकदम पीला हो गया है।
3: उसमें ऐसा करिए कि आप कहीं भी थोड़ा सा कैल्शियम उसमें इस्तेमाल करिए कैल्शियम और ह्यूमिक का छिड़काव स्प्रे करें ज़्यादा नहीं। कैल्शियम आप बुरकाव कर सकते हैं और जो ह्यूमिक एसिड होता है वो 2 grams प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाएं या आपके पास लिक्विड मात्रा में भी आता है

0: उसको 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उसमें एक बार छिड़काव कर दें। तो होता क्या है कि अगर अधिक मात्रा में उसमें कभी पानी हो जाता है, एक जगह अगर जल भराव हो जाता तो वहाँ पे पीलापन आना शुरू हो जाता। बाकी ज़्यादा कोई विशेष नहीं है कि आप उसमें किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर अगर ज़्यादा इस्तेमाल यूरिया कर देते हैं तब भी ये पीला होने के लक्षण होते हैं।
1: फर्टिलाइजर
0: मतलब जो उर्वरक खाद है, यूरिया।
1: हाँ, जिसमें एक फटेरा होता, वही ना?
0: नहीं, फटेरा तो ये कीटनाशक है।
1: अच्छा, कीटनाशक।
0: हाँ, ये कीटनाशक होता है, उसको डालने की जरूरत नहीं है। कीटनाशक तब डालते हैं जब आपके खेतों में किसी भी प्रकार का कीट का प्रकोप हो। जब कीट का प्रकोप है ही नहीं, समस्या है रोग लग

0: जब कीट का प्रकोप है ही नहीं, समस्या है रोग लग रही है, तो उसके लिए आपको जो मैंने ह्यूमिक एसिड बताया है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उसका छिड़काव कर दीजिए 10 दिन के अंतराल पे, क्योंकि ये 30 दिन में फसल लगाने लायक हो जाती बेहन, तो आप इसमें 2 ही छिड़काव कर पाएंगे, ठीक है? और उसके बाद आप उसी समय कैल्शियम का छिड़काव कर दीजिए तो आपका ये ठीक हो जाएगा। और कोई समस्या?
1: नहीं नहीं, और कोई नहीं, बस यही बात।
2: डॉक्टर बयान के समस्या का समाधान होएगा, लेकिन
3: आगे बढ़िए से पहले पंच का बताओ के विषय का है और का है नंबर।
2: भाई देखो, विषय है बागों एवं सब्जियों के फसलों में कीट एवं रोगों से सुरक्षा, और विशेषज्ञ भैया मौजूद है अपनी पंचायती माँ डॉक्टर राम गोपाल, जो उनकी विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं पादप सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा से। लेकिन पंचय हमार फोन लगावत रहे हैं, अपने समस्या का समाधान करते रहे हैं, एक प्रश्न दोबारा न पूछें, 7376804090 पर, यानी 7378040909 पर सीधे डॉक्टर भैया से बात कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, अब आज ये अपने विषय पर डॉक्टर भैया कि ऐसे ही तो अपने बागन में का कीट और का दिखाता है, का ध्यान दिए जरूरत है, खास करके ना चूंकि फल बहुत बढ़िया से आई गया है, पाके के अवस्था है, अब मजा तब आवत है कि जब मोहे तरह चला जाए, हाँ। कि नहीं आगे तो, पे बात हुए अपने सबसे, लेकिन इससे पहले फोन आ गया।
2: हेलो हेलो, हाँ भैया नमस्ते भैया, अपन नाम बताओ, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कहाँ से भैया? हेलो
1: जी, मैं उदेश बात कर रहा हूँ, एड्डे मिल्कीपुर।
2: भैया बता, डॉक्टर भैया सुना था, बता भैया।
1: मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि एड्डे में नॉर्मल कितना, एक मात्रा कितनी होती है खाद डालने का, कि जिससे हमारी मिट्टी को नुकसान भी ना पहुँचे और हमको फसल भी अच्छे मिले।
3: माटी जांच करा करे ना।
0: हाँ, इसके लिए क्या है कि आप कहीं भी खेत में अगर खाद की मात्रा को तय करना है, क्योंकि होता क्या है कि जो लोग जैसे थनाई ढैंचा ये बोते हैं उनके लिए नॉर्मल यूरिया जो होता है, अगर 1 एकड़ में आप देखते हैं तो 1 बोरी यानी 45 किलो की जो बोरी होती है उसको ये यूज करते हैं। और यदि इसको आप नहीं इसके लिए करते हैं तो आप पहले तो अपने खेत की मिट्टी की जाँच कराएँ। उसमें क्या होता है कि आपकी जब मिट्टी की जाँच होगी तो उसमें संतुलित मात्रा में कितनी उर्वरक किस समय और कितना देना है उसमें पूरा डिटेल आपको दिया जाता है, उस हिसाब से ही आप अपने उर्वरक शक्ति का प्रयोग उसमें जांच सकते हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि अलग अलग मिट्टियों में ह्यूमस जो होता है, यानी जो आप गोबर की खाद है, सड़ी गोबर की खाद डालते हैं या ढैंचे का बुआई करते हैं, पलटाई करते हैं, तो इससे आपकी मात्रा जो है आधी हो जाती है उर्वरक देने की। इसलिए आप कोशिश करें कि आप जितने अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं और उसमें नमूना आप अच्छे से लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि मिट्टी की जांच कराने के लिए 1 एकड़ खेत में वो एक ही जगह से नमूना ले लेते हैं। आप अपने खेत में 5 कोनों पे, 4 कोने होते हैं खेत के, चारों जगह से आप 1-1 किलो मिट्टी निकाल लीजिए, खोद करके लगभग 8 से 10 इंच तक आप कोशिश करें कि चारों कोनों की जब मिट्टी ले लेंगे, एक बीचों बीच खेत की मिट्टी ले लीजिए और 5ों को एक में मिक्स कर दीजिए, उसमें से 1 किलो मिट्टी निकाल करके आप नमूने को देंगे तो आपके खेत की विधिवत संतुलित मात्रा में कितनी खाद डालना है वो आपको पता चल जाएगा।
3: और सबसे उचित समय चलता है माटी जांच का ना?
0: तो ये उचित समय है, आप इस तरीके से अगर लेंगे तो पूरे खेत में कितनी मात्रा डालनी है वो एक जैसा आपका आएगा।
3: बिल्कुल, माटिक जांच अगर पंच भैया कराते तो उनका लागत घटे, आमदनी बढ़े, ही निश्चित है। लेकिन ऐसा ही तो अपने बगिया में का सुरक्षा रखे का
1: जैविक खेती करें, अगर तो
0: नहीं होगी? नहीं, देखिए आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, आज सरकार इसीलिए खेत बचाओ अभियान के तहत काम कर रही है, ठीक है, हम लोग उसमें आपकी पूर्णतः मदद करेंगे। हमारे आप कृषि विज्ञान केंद्र पे अगर आप आते हैं कभी तो आप हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती पिछले साल 3 साल से चल रही है, जिसमें हम एक भी दाना उसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खास करके जो गेहूं की फसल है और धान की फसल में बिना खाद डाले आप बहुत ही अच्छी मात्रा में आप उसके उत्पादन क्षमता पे कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जीवाश्म की मात्रा को कम नहीं होने देना है, और अगर नाइट्रोजन की पूर्ति

0: पूर्ति के लिए हमें करना है तो नाइट्रोजन की जो पूर्ति करते हैं खास करके जो बैक्टीरिया रहते हैं उनका आप बीज शोधन करके उसमें बुआई करिए। दूसरी चीज, आप अप्रैल के महीने में ढैंचा, ग्रीन मैन्योरिंग या सनाई या आप उड़द या मूंग की फसल को बो करके उसमें आप पलटाई कर दीजिए 55 दिन के बाद, तो आपकी जो नाइट्रोजन की जो उर्वरकता है वो आपकी बैलेंस में आ जाएगी। इससे क्या है कि आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और अच्छे से आप उसमें फसल को उत्पादन करेंगे, मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, आप भी स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल, ये तो रहे अपने मिल्कीपुर से उदेश भैया, एक बात आपसे जानना चाहते ना कि ऐसा जो फसल लगाए पंच भैया खास करके सब्जी है
0: जी जी,
1: वहाँ कौन कीट लाग सकते थे का ध्यान दिए जरूरत है बगिया में?
0: देखिए आजकल तो खास करके अभी बाग आमों का बाग का दौर चल रहा है, और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि किसान भाई इसमें लापरवाही कर जाते हैं। अभी आम की तुड़ाई चल रही है
2: जी।
0: आम की तुड़ाई करने के बाद ये जो मिलीबग होता है आम में सबसे खतरनाक कीट होता है
2: जी।
0: ये मिलीबग जब आम लगता है तो उस समय तो ये पेड़ के ऊपर होता है
2: जी।
0: जैसे ही आम टूटता है तो उसको खाने के लिए कुछ बचता नहीं है
2: जी।
0: तो ये क्या करता है कि सीधे पेड़ से नीचे उतर के मिट्टी में आ जाता है।
2: अच्छा।
0: कोशिश ये करें कि जैसे ही आम की तुड़ाई होती है खेत को तुरंत एक हफ्ते के अंतराल में उसकी पूरी जुताई कर दें।
2: अच्छा।
0: जुताई करने के बाद जो पौधे हैं उनके चारों तरफ चूना से उसके पुताई कर दें। इससे क्या है उसके आसपास में ग्रीस लगा करके पॉलीथीन टेप या लगा दें, तो जो मिट्टी में जैसे बारिश होगी तो ये कीट फिर से ऊपर को भागना शुरू करेगा।
1: तो
0: कोशिश करिए कि जैसे ही इसकी जुताई करेंगे और तुरंत जुताई
1: बात करी थी से पहले पंच भैया फोन आ गया है।
2: हेलो
3: हेलो।
2: हाँ भैया कहाँ से बोल रहे हैं, अपन नाम बताओ।
3: मेरा नाम पिंटू शर्मा है।
2: पिंटू भैया कहाँ से बोल रहे हैं?
3: जिला गोंडा मस्तनवा से बोल।
2: बिल्कुल भैया, अपन अपन प्रश्न पूछे डॉक्टर भैया सुनाता है।
3: नमस्ते।
0: नमस्कार नमस्कार
3: सर, मैं धान की बुवाई करना चाहता हूँ, तो सर उसमें नमी ओली कितना होना चाहिए सर?
0: देखिए नमी तो उसमें आपके पास में कम से कम 100% थे ऊपर ही होना चाहिए, समझ रहे हैं? 100% का मतलब आपकी जो 100% यानी पूरा पूरा पानी होना चाहिए धान की बुआई के।
3: नहीं बिया नहीं डालना है, डायरेक्ट बुआई करना, तो उसमें सर
0: डायरेक्ट DSR विधि आप पूछ रहे हैं ना?
2: बुआई सीधे करिए, नर्सरी ना डालिए।
0: नर्सरी आप नहीं डालेंगे ना,
2: तो
0: आप उसमें 80-90% अगर आपके उसमें है नमी तो आप उसमें तब भी 80-90% बुआई के लिए नमी होना जरूरी है, क्योंकि आप उसमें बोने के तुरंत बाद पानी नहीं लगाते हैं, है ना?
1: ये बताओ छिटकाव विधि से बोई है मशीनियां बोई है?
0: नहीं मशीन से है, DSR विधि जो है ज्यादा। आप किस बुद्धि से बुआई करेंगे?
2: हाँ भैया बताओ।
0: आप छिटकवा विधि से करते हैं
3: क्या?
0: आप बुआई किस विधि से डायरेक्ट करेंगे?
3: डायरेक्ट हाथों से होगा।
0: अच्छा, खुरपी के माध्यम से कर सकते हैं, तो आपके पास उसमें ऐसा करिए कि मिट्टी में पैर ना धसे। जब आप बुआई करेंगे तो मिट्टी में पैर नहीं धसना चाहिए, क्योंकि इसमें आप बैठ करके बुआई करेंगे चलेंगे तो मिट्टी में पैर धसेगा, आप बुआई नहीं कर पाएंगे, मिट्टी जैसे ही सूखेगी हार्ड हो जाएगी। तो इसके लिए आपके पास
3: है?
0: हाँ 60-70% वो तो भिगोने के बाद ही आप बोएंगे। अगर आप वैसे भी बोना चाहते हैं तो आप रात में खुला छोड़ दीजिए उसमें, और एक रात के बाद आप तुरंत उसको सुबह आप DSR मेथड से अगर बुआई करते हैं तो कम से कम 80% आपके पास नमी होनी चाहिए। अगर ऐसी नमी है तो आपके जर्मिनेशन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोशिश आप ये करिए कि एक रात अगर भिगोने के बाद बीज को और ट्राइकोडर्मा के माध्यम से या आप कार्बनडाजाइम के माध्यम से उसको ट्रीटमेंट जरूर कर लीजिए, उपचारित जरूर करिए। इससे क्या है कि आप में जो कंडुआ रोग लगता है जिसे यहाँ पीला रोग बोलते हैं, हल्दिया रोग भी बोला जाता है आप लोगों के इधर, तो उससे आप निजात पा जाएंगे। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि बीज का शोधन करने के उपरांत ही आप खेत में सीधे बुआई डायरेक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर रामगोपाल भैया, एक बात जानना चाहते हैं।

0: जब कहीं बरसात हुई तो कीड़ों में फिर ऊपर भगी।
1: हाँ, तो इसमें क्या करते हैं कि जो पौधे होते हैं इनमें ये दरारे होते हैं, तो ग्रीस लगी होगी, तो जैसे ही ये ऊपर चढ़ेगा उसमें ग्रीस में चिपक जाता है, तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं। दूसरी चीज, इसमें पन्नी लगी होगी उसपे से फिसल जाता है, तो जब ये ऊपर जा नहीं पाएगा तो इसमें ये साल भर ये मिट्टी में ही रह जाते हैं, और बरसात में ये आधे से ज्यादा कीट इसी में खत्म हो जाते हैं। और अगर ये ऊपर चढ़ गए तो ये लाखों की संख्या में फिर से पैदा हो जाएंगे और ये नीचे नहीं उतरेंगे।
2: अच्छा।
1: फिर फरवरी में बौर आ जाता है, एक तो ठंडई की मौसम होता है तो ये सब छुप जाते हैं, और जैसे ही अनुकूल तापमान इनको 20 से 25 डिग्री आता है ये फिर से बाहर निकल आते हैं और पूरे पौधे में। इसीलिए देखिए, जब लहसी लगती है या जब बौर आता है सारा बौर गिर जाता है, लोग जान नहीं, उसमें भुनगा काम करता है तो रस चूस सकता
0: है। अब आगे भुनगा बात करते से पहले पंच भैया फोन है।
2: हेलो
3: हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: भैया,
3: कहाँ से बोल रहे थे? राजकिशोर बस्ती से बोल रहा हूँ। परवल का खेती किया हूँ सर, वो सब पीला हो जा रहा था।
1: किस चीज की?
3: परवल का खेती।
0: परवल, परवल।
1: अच्छा, परवल की खेती।
3: जी सर।
1: परवल कितने दिन का पौधा हो गया आपका?
3: यही लगभग 3-4 महीने, 4 महीने।
1: कितनी तुड़ाई हुई है अभी तक?
3: तुड़ाई यानी 10-15 दफे।
1: अच्छा, इसमें ऐसा करिए कि देखिए, जितनी भी रनर पौधे होते हैं, रनर मतलब जितनी भी फैलने वाली फसलें हैं, इसमें ज़्यादातर तो उकठा रोग की समस्या होती है, और इसमें आप ट्राइकोडर्मा जो आपका आता है, ट्राइकोडर्मा जो आप हार्जेनम है, बेबेरिया बैसियाना है, आप जितने भी हैं, आप हार्जेनियम वगैरह ट्राइकोडर्मा आप कहीं भी कृषि रक्षा इकाई के माध्यम से आप ले लीजिए, और उसमें उत्पादन तिथि जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो ट्राइकोडर्मा होता है वो 5 से 6 महीने तक ही उत्पादन तिथि के काम करता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। उसके जीवाणु बेस्ड ये ट्राइकोडर्मा होता है, इसका आप घोल बना लीजिए 3% का, और 3% का घोल बनाने के पश्चात ही
0: जी
1: आप इसमें सब में ड्रंचिंग कर दीजिए, तो आप इसमें जो पीलापन है आपका हरा हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपकी नहीं रहेगी।
0: बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखें, अपन समय देखा थे समाप्ति की तरफ है
1: जी,
0: समय बचन है ना, तो आप किसान भैया का क्या सलाह देंगे, कहे से उनके खेते में हरी फसल या ऐसा सब्जी वाली बगैर बारे में आप बताएंगे?
1: अब हाँ। इस समय देखिए फसलों का
0: बहुत कम समय में बताएंगे।
1: इस समय भारत सरकार ने जो मुहिम चलाई है, पहली चीज तो आप केमिकल पेस्टिसाइड पे अवॉइड करिए, फर्टिलाइजर को कम मात्रा में इस्तेमाल करें, और जिन फसलों में अधिक कीट लग रहा है तो उसके लिए प्राकृतिक रूप से जो जैविक खेती का बढ़ावा सरकार दे रही है उसमें आप नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और दसपरड़ी, ये कई प्रकार के पेस्टिसाइड भी इसमें बनाए जाते हैं, उनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो खेत को ऊसर बंजर होने से बचा लेंगे,
0: इससे आप
1: स्वस्थ रहेंगे, मृदा स्वस्थ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा देश स्वस्थ बना रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये चीज और जी डॉक्टर भैया कि चलत चलत आप ये बता दें कि पंच भैया का जैसे आप बताएं प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दिए का है कि नहीं मिमला, लेकिन आज बताओ चला, प्रस्तुति सहयोग रहा जयंत पटेल भैया का, और तकनीकी सहयोग रहा अश्विनी शुक्ला और राजकुमार मौर्या भैया का, और अपन विशेषज्ञ रहे डॉक्टर राम गोपाल भैया जो इन विषय वस्तु विशेषज्ञ पादप सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से रहे। हाँ बिल्कुल, आप हमारी पंचायती में डॉक्टर साहब आपका
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: जो अयोध्या मंडी से बाजार भाव मिल रहा है वो पंच का बताओ।
2: बिल्कुल, जो चावल का मंडा 3060 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा, गेहूं दड़ा 2585 रुपया प्रति क्विंटल रहा, मक्का पीली रही 2360 रुपया, उरद काली वाली रही 9210 रुपया, चना देसी 6400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा, मसूरी 7150 रुपया प्रति क्विंटल,
0: अरहर दाल 10900, आलू सफेद 895, प्याज लाल 1300, टमाटर के भाव रहा 2000 रुपया प्रति क्विंटल,
2: लहसुन 7150 रुपया, तरोई 1125 रुपया, रुपया, खीरा 2070 रुपया, बैगन 2000 रुपया, हरी मिर्च 3400 रुपया, जेमा कद्दू 1100 रुपया, अदरक के भौरा 9200 रुपया प्रति क्विंटल की।
0: शिमला मिर्च 2800, भिंडी 1425, लौकी 1560 और करेला भौरा 1250 रुपया प्रति क्विंटल।
2: जेमा केला

0: पकरहा 2,800 रुपया, नींबू 6,500 रुपया, पपीता 2,800 रुपया, सेब के भाव 12,150 रुपया, अनार के भाव रहा 7,600 रुपया, गुड़ बट्टी वाला 5,170 रुपया, चीनी के भाव रहा 4,130 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
1: इतना अयोध्या मंडी से जो का बाजार भाव मिला रहा। पंच का लगे हाथ आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम विज्ञान विभाग से जो मौसम की जानकारी मिली है ना, वो बताओ चली कैसे सही छिनमा होता है आम के ताना।
0: बिल्कुल मरम का होना
1: चाहिए। हाँ, ये सही कहीं आंधी होती है, कहीं पानी होता है, तो क्या रहे मौसम यो बताओ।
0: अधिकतम तापमान 34.0 जोन की सामान्य से 4.4 डिग्री कम रहा, न्यूनतम 22.0 जोन की सामान्य से 4.7 डिग्री कम रहा। आर्द्रता के अधिकतम रही 83%, न्यूनतम 52%, हवा की गति 7.0 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रही और दिशा रही है कि उत्तर हवा पूर्व हवा।
1: अब वाले 24 घंटे के बारे में अनुमान है कि हल्का से मध्यम बादल छावा रहे, कहूं कहूं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और हल्की वर्षा हो सकत है। तो पंच भैया अपन ध्यान रखिए, सावधानी बरती है और बिल्कुल कालापन कार्यक्रम रहे कृषि जगत ओमा तो सब कुछ सुनबे करिए। लेकिन फिर कहियो यही वादक साथ है कि यही कार्यक्रम में हम सब फिर मिलबे, लेकिन अपने पंच भैया का एक बात और बताओ चलबे ना कि यह साइड जोन सरकार के मुहिम चलती है ना खेती बचाओ, डॉक्टरों भैया बताइन सब ही बताए इस प्राकृतिक खेती की तरफ हुआ जो बचपन में अपने सब ही करत रहे ना गोबर खाद, कितना घोर लागत रहा याद करा।
0: हाँ।
1: घोरे में कितनी खाद ही रहती रही।
0: और भाई देखो कितना अपन जोन किसान के मित्र रहे केचुआ रहे वो मन कितना पावा जाता
1: है। अरे जब बेरनिया लागत ले जाए के ना धनवा के रुपया होती रही
0: वही जूरिया मम्मा रे के जोन है लाग जात रहे,
1: जूरिया में रहे गोड़वा में कितना केचुआ खा लिए रहे, लेकिन आज हमारे जितना मित्र कीट है गायब हो जाता है।
0: तो अपने सबका बचाव है।
1: हाँ, मधुमक्खी पालन जो भी अपन मित्र कीट है उनका अपने सबका बचाव का है, अपने प्राकृतिक खेती की तरफ का है,
0: जैविक खेती की तरफ भी बढ़े का है अपने सबका। तो इस पे ध्यान दीजिए। तो हम जाने थे कि औखादी के जो उर्वरक वाली खाद एका कम से कम इस्तेमाल की जाए, डॉक्टर साहब के बतियो यह रही की मतलब एका कम से कम की जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे और हरी खाद पे ज्यादा ध्यान दी जाए।
1: बिल्कुल,
0: तभी अपन खेती ऊसर हुए से बचे।
1: ऐसे पंच भैया का माटी के जांचो करा का अपन जरूरी है, माटी के जांच अपन कराए रहे, का तैयारी है सब अपन बनाए रहे। लेकिन फिर कई कार्यक्रम में मिलवे, तब तक कितना है हमें यानी रामू
0: और विमला का अनुमति पंच जय हिंद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहे।
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी FM एंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप akashvani.gov.in पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुन रहे हैं। शाम के 7:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण। आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 पर आप हमारे स्टूडियो से सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। रात 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर होगा आपका पसंदीदा दैनिक सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। लाइव जुड़ने के लिए स्टूडियो का टेलीफोन नंबर नोट कर लें 73-76-80-40-90। और आइए आपको कल के कुछ

खास कार्यक्रमों से अवगत करा दें। कल सवेरे 7:15 पर कार्यक्रम विवरण, 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश, 8:15 पर सुर संगम और 8:30 से दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में चर्चा का विषय रहेगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर प्रशांत कुमार की वार्ता सुनवाई जाएगी जिसका विषय होगा सर्पों की अनोखी दुनिया, एक विहंगम दृष्टि। फिल्म संगीत और स्थानीय खबरें भी इस प्रोग्राम में होंगी। कल सुबह 9:00 से व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का दैनिक कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत पेश किया जाएगा। 9:30 से फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या आप सुनेंगे। 11:55 पर आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम सरकार की उपलब्धियों से संबंधित, और 12:30 से आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग, 1:00 से फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और दिन में रोजाना आप सुनते हैं गैर फिल्मी गीत गीतांजलि में। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम अंगना के अंतर्गत विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर चर्चा के अलावा शिक्षा और प्रेम से संवारो बचपन, स्वयं समाज और राष्ट्र के लिए विषय पर वार्ता सुनवाई जाएगी। अनामिका मिश्रा होंगी वार्ताकार। इसी कार्यक्रम में घरेलू सुझाव भी दिए जाएंगे। शाम 5:00 से युवाणी में चर्चा का विषय रहेगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। स्थान सेगमेंट में सिक्किम के गंगटोक की यात्रा करेंगे आप, और युवाणी में ही होगा शब्दावली। शाम 5:30 से लोक संगीत, 6:10 पर आप सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी, 6:30 से कार्यक्रम लोक संगीत जिसका नाम होगा गूंजी स्वर गांव के। शाम 6:45 से कृषि जगत में चर्चा का विषय रहेगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। डॉक्टर रॉबिन कुमार से जानिएगा धान की फसल के लिए भूमि परीक्षण आधारित पोषण प्रबंधन रणनीतियों के बारे में। कल रात 8:15 पर गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल, और 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या का होगा प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के शेष और कल के प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर बाद आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी सी करें प्रतीक्षा।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

0: आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
1: बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसमें नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित बैठक में मानव विकास, सुशासन और जन भागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल नई दिल्ली में आयोजित एनडीए के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
3: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। यह हम लोगों का सौभाग्य है, कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

0: अहम। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29,00,000 मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। यहां 1,60,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने पहली बार सभी मतदाताओं के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। लखनऊ स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज कुमार मित्तल ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।
2: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है सीयूटी के माध्यम से। कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारा हेल्पलाइन भी नंबर दिया हुआ है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है।
1: अयोध्या में आज होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने बताया कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
3: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया उन्होंने दो बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ टाइप सुझाव दिया जाए, ईपीएफ टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और शासन स्तर से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसको सभी संपन्न कराएंगे।
1: प्रदेश के कई जनपदों में कल से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महाराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29,00,000 मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आधी और बारिश

ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रम को आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं अब अपने मुंबई केंद्र, जहां अब से लेकर रात्रि 8:15 तक जब स्टूडियो से होगा गीत गुंजन प्रोग्राम, उस वक्त तब तक के लिए आइए आपको जोड़ रहे हैं मुंबई केंद्र से, सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे ये गीत वापस फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में, मजरूर सुल्तानपुरी के पोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है जयमाला।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता।

0: ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।
1: हम सुन रहे थे सिलसिला फिल्म का ये गीत अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरे के संगीत के साथ। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम जयमाला। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम में
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म निर्देशक इकबाल अली से। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता।
0: आज सुनिए दूसरा भाग।
1: कल के लिए अपना कोई प्रोग्राम तो बता।
0: दोस्तों नमस्कार।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ इकबाल अली साहब हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे दिलचस्प बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत इकबाल अली साहब।
1: शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, राजेश हमाल जी एक नेपाल के आज के सुपरस्टार हैं वहाँ के।
0: अच्छा,
1: उनके विषय में भी एक दो शब्द आपको बता देता हूँ। छत्तीस जी करके एक थे, वो डायरेक्टर ही थे वहाँ के, काफी फेमस डायरेक्टर थे नेपाल के, सतीश कुमार सर
0: जी
1: अंधेरी में रहते थे। सतीश जी ने मुझे कॉल करके बुलाया, नेपाली फिल्म का नाम था गोपी किशन, तो उन्होंने बोला कि आपको पूरी फिल्म करनी है।
0: जी जी,
1: मैंने सर वो पूरी फिल्म की, राजेश हमाल जी की फर्स्ट फिल्म थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर वो फिल्म जो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली हुई थी नेपाल में,
0: ओके,
1: और पहली फिल्म थी राजेश हमाल जी की, आज वहां के सुपरस्टार हैं। तो ऐसा मैंने सर बहुत सी फिल्में की और सीखता गया, अभी भी सीख ही रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, उम्र भी होती जा रही है, सीखने में तो जीवन निकल जाएगा, पूरा जीवन में आदमी कभी पूरा हो नहीं सकता है।
0: जी जी,
1: तो मैं स्वतंत्र रूप से फिर मैंने सबसे पहले तो यूनियन ज्वाइन की, मेंबर बना मैं, के बाद में सर फिर मैंने स्वतंत्र रूप से निर्देशन के क्षेत्र में मैंने संघर्ष शुरू किया। तो एक प्रोड्यूसर थे, उनका नाम था अजय शाह, और उनके एक साथी थे हितेश शाह, अजय शाह हितेश शाह, ये दोनों महावीर सीरियल बना रहे थे।
0: जी जी,
1: भगवान महावीर, और उस दौर के अंदर काफी मतलब सीरियलों का दौर था, तो बड़ी बड़ी सीरियलें आ रही थी। तो किसी ने इनको सजेस्ट किया कि यार वो लड़का जो है ना इकबाल अली, उसको लो आप, पता नहीं किसी ने तारीफ कर दी कि मेरी।
0: जी जी,
1: तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये सीरियल बनानी है, मैथोलॉजिकल सीरियल है, भगवान महावीर के ऊपर है, और मुझे पहले इनके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा, मुझे इनके बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कहीं कोई मुझसे गलती ना हो जाए।
0: जी जी,
1: तो सर मैं तुरंत आपको हाँ नहीं बोल सकता हूँ। तो सर देखिए, उनकी मानता, उन्होंने मुझे फुल हेल्प की, और मैंने दो साल तक, मतलब ये समझ लीजिए कि मैं जैन हो गया, और दो साल तक मैं मतलब बड़े बड़े गुरुओं से मिलता गया। हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो जैन थे दोनों, तो वो मुझे ले जाते थे, मैंने उनकी किताबें पढ़ी, महावीर पुराण पढ़ी। दो साल तक मैंने सर बहुत मेहनत की, और ये दो सालों में मैंने कोई काम नहीं किया, और मैं थोड़ा फाइनेंशियली परेशान तो होता था, क्योंकि थोड़ा गरीब आदमी हूं मैं भी, लेकिन एक शौक था मुझे, जुनून था मेरे अंदर कि नहीं, मुझे अगर करना है तो करना है, और ईमानदारी से करना है, और आगे एक कामयाब निर्देशक बनना है, ये एक मेरे अंदर वो था।
0: जी,
1: तो सर मैंने भगवान महावीर सीरियल जो है, फिर हमने उमरगांव के अंदर वृंदावन स्टूडियो है जहां पर रामायण वगैरह की शूटिंग हुई थी, तो पटेल साहब का है, अभी तो उनका ध्यान हो गया, बहुत नेक इंसान थे। उमरगांव में हम गए, उमरगांव में हमने सेट वगैरह लगाया। सर पहले क्या था कि आप जानते होंगे कि पायलट एपिसोड बनते थे दूरदर्शन के लिए, कि भाई आप चार पायलट बनाइए, वो पहले दीजिए, हाँ अप्रूवल होंगे, उसके बाद में फिर आपको वो मिलेगा, टाइम वगैरह जो भी है, स्पॉन्सर वगैरह जो भी है। तो मैंने वो चार एपिसोड मेहनत करके उस चार एपिसोड को मैंने कंप्लीट किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि वो चार एपिसोड को बनाने के अंदर मुझे कम से कम 3-4 साल लग गए।
0: अरे बाप रे,
1: 3-4 साल इसलिए लगे कि मैं 3 साल तक तो अध्ययन ही करता रहा जैन धर्म के बारे में, भगवान महावीर के बारे में जानने की।
0: जी,
1: और उसके बाद में फिर साल भर तो मुझे मतलब उसको पिक्चराइजेशन करने में लग गया, क्योंकि कॉस्ट्यूम ड्रामा था, और उस टाइम बड़ा टफ मामला था सर, दूरदर्शन के ऊपर बड़ी बड़ी सीरियलें आ रही थी उस टाइप की, और न्यूज़पेपरों के अंदर काफी चर्चे, मुझे काम भी तो फिर वो हिसाब से करना था, और मेरा तो मतलब सब कुछ था इसके ऊपर ही दारोमदार था। तो मैंने सर वो बहुत खूबसूरती से मैंने वो चार एपिसोड बनाए, लेकिन वहां भी नसीब ने साथ नहीं दिया, कुछ प्रोड्यूसर को आपस में कुछ उनका था मामला, कुछ जमा नहीं, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया।
0: ओहो,
1: बहुत बड़ा धक्का लगा, मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, और मैंने मेरा पूरा समय मेरा इसमें गया, खैर होता है जिंदगी के अंदर। फिर संघर्ष में लग गया सर, संघर्ष करता रहा, फिर अब मुझे अब तो जागो फिल्म मेरी वो मैंने कंप्लीट की, मतलब ये सोच लीजिए कि मैंने कम से कम 20-25 फिल्में मेरी शुरू हुई होगी, कुछ मुहूर्त हुआ, कुछ 2-4-5 रील बनी, कुछ 10-15 दिन की शूटिंग हुई, कुछ ये हुई, लेकिन मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, हमेशा प्रोड्यूसर की तरफ से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते थे, और पिछले बंद हो जाती थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम बोलिए, कहीं प्रोड्यूसर का देहांत हो गया, कहीं कुछ हो गया, बड़े मसले हुए मेरे साथ में।
0: जी जी,
1: हाँ, बहुत संघर्ष मेरी लाइफ में रहा सर। तो उसके बाद में अब तो जागो मैंने एक फिल्म बनाई, मैंने ईश्वर से अल्लाह से ये प्रार्थना किया सबसे पहले कि मालिक अब ऐसा कुछ मत होने देना, इस फिल्म को तो कंप्लीट करवा दे। तो सर वो मेरी फिल्म कंप्लीट हुई, मैंने राजस्थान में शूट किया।
0: जी,
1: उसके अंदर तो सर ऐसा हुआ कि जो दो हमारे जो प्रोड्यूसर थे, एक अनिल चेलानी साहब और एक विजय शर्मा साहब, बहुत नेक इंसान है वो दोनों, जो कलाकार थे, थिएटर के आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि इकबाल जी हम इसमें एक्टिंग करेंगे। तो हमने ठीक है सर कोई बात नहीं, एक कहानी लिख देते हैं, एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, आप बताइए आपको किस टाइप का आइडिया आपका है। उन्होंने बताया इस टाइप का है, हमने उस पर काम शुरू कर दिया, वो फिल्म हमने कंप्लीट कर दिया सर, और बहुत बेहतरीन हमारी फिल्म बनी वो। लेकिन सब नए आर्टिस्ट

0: थे, पैरा कोई फेमस था नहीं फिल्म के अंदर। आप तो जानते हैं कि पोस्टर के ऊपर जो है वो कम से कम अगर फिल्म पोस्टर लगता है सिनेमा हॉल के बाहर तो उसपे कम से कम कुछ चर्चित चेहरे तो होने चाहिए ना।
1: जी जी,
0: तो उस हिसाब से शायद हम उस पिक्चर में भी सही ढंग से सफल नहीं हो पाए। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा उस फिल्म के बारे में, देखिए हीरोज कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी फिल्में चाहे वो शाहरुख साहब की हो, चाहे वो अजय देवगन साहब की हो या सलमान भाई की हो, बड़ी बड़ी फिल्में जो है वो करते हैं, अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया, तो उसमें मेरी फिल्म को ही सजेस्ट किया।
1: जी जी,
0: और मेरी फिल्म को ले लिया उन्होंने और अब तो जागो को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया हीरोज ने।
1: बिल्कुल,
0: तो ये एक मेरे लिए कामयाबी वाली बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए।
1: इसके बाद आपने क्या किया?
0: इसके बाद एक शॉर्ट मूवी बनाई, वो मुंबई एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, मुंबई एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो उसके बाद में मेरी उम्र भर की एक मेरी एक वो थी, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला।
1: जी जी,
0: 2022 में। उसके बाद में फिर मैंने एक मूवी और बनाई, शॉर्ट मूवी। अब मैं थोड़ा सा मतलब क्या है कि मैं अपने आप को ये करने के लिए मैं भाई काम तो काम है।
1: जी जी जी।
0: फिर उसके बाद मैंने देवता बनाई। सर देखिए वो देवता भी जो है मेरी चले गई खजुराहो इंटरनेशनल के अंदर, उसको भी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिल गया।
1: जी जी।
0: उसके बाद में सर मैंने अभी फिलहाल मैंने 5 एपिसोड आखिर कौन वेब सीरीज, बहुत प्यारी वेब सीरीज है और उसके साथ आमिर खान साहब एक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उस फिल्म के अंदर। हम लोगों ने वो बहुत प्यारी वेब सीरीज, सस्पेंस वेब सीरीज है, तो वो बन चुकी है, बस अभी हम ओटीटी पे बहुत जल्दी आएगी, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। और अभी तो मेरे काफी प्रोड्यूसरों से मीटिंग चल रही है और काफी मतलब प्रोजेक्ट है मेरे हाथ में, बस अब वो कंप्लीट होंगे उसके बाद में फिर देखेंगे क्या होता है।
1: बिल्कुल
0: सर, मैं एक और बोलना चाहता हूँ।
1: जी बताइए।
0: वो ये है कि मैंने तो संघर्ष किया,
1: जी
0: 35 वर्ष संघर्ष किया, संघर्ष क्या होता है ये मुझे पता है। तो सर मैंने एक अपना चैनल बनाया।
1: अच्छा,
0: वन टेक।
1: ओके।
0: और उसमें मैंने ये सोचा कि जो संघर्षशील लोग हैं, जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं,
1: yes.
0: उनकी प्रतिभाओं को जो मैं लोगों के सामने लाऊं, तो सर मैं उसमें बहुत कामयाब हो गया। तकरीबन आज समझ लीजिए कि 10 एपिसोड उसके मैंने कंप्लीट कर दिए हैं।
1: जी जी।
0: उसमें मैंने फिरोज बॉस करके फाइट मास्टर है, काफी फेमस फाइट मास्टर है और बहुत नेक इंसान है, मैंने सबसे पहले उनका एक प्रोग्राम बनाया, उसके ऊपर उनकी प्रतिभाएं बताई, उसके अंदर उनका इंटरव्यू लिया। देखिए ये तो एक ऊपर वाले की देन होती है, आदमी अगर सच्चे दिल से अगर मेहनत करता है, लगन करता है, तो ईश्वर उसको जरूर कामयाब करता है। तो कुछ ऐसा हुआ कि फिर से मुंबई जो फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल के अंदर उस एपिसोड को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया।
1: अरे वाह,
0: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। फिर मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा हो गई और मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैं अभी मतलब मेरा एक प्रोग्राम आता है जो मैं नई प्रतिभाएं हैं, जो हमारे भारतवर्ष में भारत देश के अंदर जो प्रतिभाशाली लोग हैं और जिनकी प्रतिभाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनका प्रोग्राम बनाऊं, दर्शकों तक मैं वो पहुंचाऊं। तो मैं ये काम भी करता हूं और निःशुल्क करता हूं सर, और मैं उसमें कामयाब भी हूं और ईश्वर चाहेगा तो आगे भी कामयाबी मिलेगी।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आप आए और अपने सफर के बारे में आपने अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने का।
0: धन्यवाद।
2: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले

0: फिल्म निर्देशक इकबाल अली से बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: अंगना में बाबा द्वारे पे मां।
0: रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगली।
2: कैसे आए गौरी हम तोहरे घर मां।
0: प्रस्तुतकर्ता।

0: पर तुम पर कोई असर नहीं होता। The pain of loving you is almost more than I can bear.
1: मुझे देर हो रही है, तुम्हें कोई खास बात करनी है?
0: कहने को तो बहुत कुछ है ना। कल रात मैंने एक सपना देखा, तुम गुलाब का एक फूल लाए हो और चुपके से मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। कहने लगे, नीरजा ये फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं? सच उस समय मैं कितनी खुश थी, जैसे फूल पत्ती के प्रेम पर जिंदा रहता है ना, बस ऐसे ही मैं तुम्हारी। काश ये सपना असली होता।
1: सपना वही देखते हैं जो अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाते।
0: गलत, जो जिसे प्रेम करता है वही उसका सपना देखता है।
1: ये जानते हुए भी तुम मुझसे प्रेम करते हो?
0: ये भी कोई पूछने की बात है?
1: तुम्हें गलत फहमी है।
0: मुझे वो भी प्रिय है क्योंकि वो तुम्हारी ही दी हुई है।
1: ये तुम्हारे अनुराग की चरम सीमा है नीरजा, जो सत्य को जानते हुए भी तुम अनंत की ओर बढ़ रही हो।
0: क्या करूं, अनंत पद कामी जो ठहरी।
1: तुम्हें समझाना मुश्किल है।
0: एक बात मानोगे?
1: क्या?
0: कल शाम हमारे कॉलेज के सालाना जलसे में मेरा डांस का प्रोग्राम है, आओगे ना?
1: कल तो मैं बहुत बिजी हूँ।
0: प्लीज कैसे भी आइए।
1: देखो मैं मजबूर हूँ। ओके, फिर मिलेंगे।
0: निष्ठुर। अरे हाय, सुनिए तो आनंद जी, दिल तोड़ दिया बिचारी का। दर्शन के प्यासे दो लोचन, बिन देखे अफुलाते, हर सिंगार के फूल से सपने पलछिन में मुरझाते।
2: देख झरना, उत्तम मत कर, मेरा दिल पहले ही बहुत दुखी है,
0: इसीलिए तो कहती हूँ प्रीत किए दुख होए।
2: दुख हो या सुख, मुझे अनंत से प्रेम है।
0: बस जब देखो अनंत अनंत अनंत, इसका कोई अंत भी है? जब उसे तेरी कोई चिंता नहीं तो तू उसके लिए क्यों इतनी व्याकुल रहती है? नहीं मानता तो सब्स्टिट्यूट कर दो।
2: कब तक नहीं मानेगा? मैं इंतजार कर सकती हूँ।
3: अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो?
2: ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने प्रेम पर भरोसा है। मैं अपनी पूजा भक्ति और लगन से उसे जीत लूंगी। अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है तो उसे एक दिन बदलना ही पड़ेगा।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहला प्रेम है ना, पर ज्यादा भरोसा मत करना।
2: तू नहीं जानती झरना, पहला प्रेम गले में बंधी उस घंटी की तरह होता है जो बस हर समय कानों में बजती ही रहती।
3: तुम घंटी बजाओ और वेटर को बुलाओ।
2: अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम कुछ लोगी?
3: कुछ नहीं, बस मुझे घर तक लिफ्ट दे देना।
2: अच्छा आओ चले।
4: नीरा जी।
0: कौन है?
4: वही आपका रोमियो।
0: ओ, आप क्या कहना चाहते हैं?
4: कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर ये कमबख्त दिल कुछ धड़कता सा है। सच तो ये है कि जब आपसे बातें करता हूँ तो सब कुछ फूल सा जाता हूँ और कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ।
0: मिस्टर रूप, मालूम होता है आजकल आप बहुत फिल्में देखने लगे हैं।
4: करेक्ट, पर ये मेरे दिल की फिल्म है जिसे सिर्फ आप ही अपने मन की आंखों से देख सकती हैं। आप ही मेरे सपनों को साकार कर सकती हैं। क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं है?
0: मित्रता का अर्थ प्रेम नहीं होता मिस्टर रूप, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं कुछ हद तक आपको पसंद भी करती हूँ, पर प्रेम नहीं।
4: पसंद और प्रेम दोनों में थोड़ा ही फासला होता है। पसंद का दूसरा नाम ही कशिश है और जहाँ कशिश है वहीं मोहब्बत है।
0: ये आपका फलसफा हो सकता है
4: मगर सच
0: नहीं, एकदम गलत। मुझे आपसे प्रेम नहीं है।
4: कल शाम मिलोगी? नहीं,
0: मेरा डांस का प्रोग्राम है। सॉरी, अब आप जा सकते हैं।
4: हाय, किस बुत की मोहब्बत में गिरफ्तार।

0: आनंद।
1: हेलो नीरजा, आज कैसे भूल पड़ी?
0: भूलते ही कब हो, हर पल तो आंखें तुम्हें ही खोजा करती है। न जाने तुम्हारी सांवली सलोनी सूरत में कैसा आकर्षण है कि सासों की बंसी तुम्हारे ही नाम को तैरती रहती है।
1: बस बहने लगी ना भावलोक में।
0: सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत रिंग खरीदी है, देखो। सुनो, आज शाम पिक्चर देखने चलोगे?
1: मेरा आज तो आर्ट्स फैकल्टी में लेक्चर है।
2: ओ डार्लिंग, तुम तो हर समय व्यस्त रहते हो, मेरा जरा भी ख्याल नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती हूँ, कितने सपने सजाती हूँ।

0: हेलो नीरजा,
1: तुम यहाँ भी?
0: यहाँ तुम, वहाँ हम।
1: मेरा ख्याल छोड़ दो,
0: मैं तो बधाई देने आया हूँ।
1: किस बात की?
0: नृत्य की सफलता पर।
1: ओह धन्यवाद।
0: सुनिए, ये कुछ फूल आपके लिए लाया था।
1: मुझे देर हो रही है, चलो झरना।

0: दिलचस्पी हो, रूप है दिलचस्प आदमी, तुझे बहुत पसंद है तो तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? अगर वो मुझे इतना चाहता जितना तुम्हें चाहता है तो जरूर कर लेती, क्या कमी है उसमें? हर बात में A1 है, A1 हो या टॉप ग्रेड, मुझे तनिक पसंद नहीं, मुझे तो उससे नफरत है।
1: चलो नफरत ही सही, कुछ तो है तुम्हारे दिल में उसके लिए,
0: बेचारा कितने अरमान रखता है।
1: देख झरना, अगर तुझे रूप की तारीफ करनी है ना तो पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ, अनंत के घर बाद में जाऊंगी।
0: अच्छा भाई, चुप हो गई, पानी में रह के मगर मच से बैर कौन करे?
1: मैं मगर हूँ,
0: यू सिली गर्ल।
1: लो वो आ गया तुम्हारे चहेते का बंगला।
0: रामू
2: जी,
0: अनंत बाबू हैं?
2: जी नहीं, और वो तो पिक्चर देखने गए।
0: अकेले?
2: जी नहीं, साथ में एक थी।
0: थी? नाम?
2: नाम तो मालूम नहीं, पर
0: ठीक है। अनंत जी आए तो कहना मैं आई थी।
2: जी अच्छा।
0: ओह छना, अब तुम गाड़ी ड्राइव करो, मेरा तो मूड एकदम ऑफ हो गया है।
1: और कहीं गाड़ी का मूड ऑफ हो गया तो
0: फिर मजाक।
1: वो तो मेरी आदत है, सच तुम तो जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो। अनंत से फोन करके पूछ लेना क्या बात है, हो सकता है नौकर को सही बात ना मालूम हो।
0: प्लीज झरना ड्राइव कर, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। अनंत, ये तुमने क्या किया? मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरा प्रेम क्षण भर में ठुकरा दिया। तुम नहीं जानते अनंत, नारी जीवन में सिर्फ एक पुरुष को ही प्रेम करती है, उसी को अपना इष्ट, अपना देवता मानती है। मैंने संपूर्ण निष्ठा से तुम्हें चाहा, तो समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे क्यों रूठ गए, क्यों रूठ गए? शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मैं तुम्हें नहीं पा सकी। पाना या न पाना तो भाग्य की बात है, पर तुम्हें बुला देना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं।

0: मीरजा।
1: हेलो।
0: तुम अभी घर आई थी?
1: हाँ।
0: कोई खास बात?
1: वही तो मुझे पूछनी है।
0: कौन सी बात?
1: वही जो तुम बताना नहीं चाहते।
0: ऐसी तो कोई बात नहीं।
1: पिक्चर किसके साथ गई थी?
0: तो ये बात है।
1: कौन है वो लड़की?
0: मेरी मंगेतर।
1: तो मैं क्या थी अब तक?
0: एक मित्र।
1: तुमने मुझे धोखा दिया।
0: गलत।
1: तुम विश्वासघाती हो।
0: ये तुम्हारा भ्रम है।
1: सत्य को भ्रम कहते हो?
0: नहीं, भ्रम है तुम्हारा। मैं पहले भी तुम्हारा एक मित्र था और आज भी एक मित्र हूं।
1: ठीक है, ठीक है, पर तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे अंधेरे में क्यों रखा?
0: तुम कल्पना के पंखों पर उड़ती रही तो मैं क्या करता? मैंने कई बार तुम्हारी उपेक्षा भी की, पर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। इसमें मेरा क्या दोष है?
1: तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया। आखिर आखिर मुझमें क्या कमी थी जो तुमने मुझे से शादी नहीं की?
0: जानना चाहती हो?
1: हाँ।
0: तुम अति आधुनिक और स्वच्छंद हो। पति को सिर्फ तुम एक बैनर समझती हो। मुझे घर से प्यार करने वाली पत्नी चाहिए मिर्जा, फैशन की गुड़िया या मॉडल नहीं।
1: गलत है आनंद, गलत है। आई एम होम लविंग।
0: फिर तुम्हारा रूप से भी प्रेम है। राकेश के साथ भी मैंने तुम्हें कई बार घूमते देखा है।
1: वो तो सिर्फ मेरा एक मित्र है और कुछ भी नहीं।
0: मित्र है तो तुम्हारे चक्कर क्यों काटता है? तुम भी तो बहुत घुल मिल कर बातें करती हो उससे।
1: तुम्हें भ्रम है आनंद, भ्रम है। अगर मैंने किसी को चाहा है तो सिर्फ तुम्हें।
0: ये तुम्हारा ढोंग है।
1: शायद दुनिया से सच्चाई उठ गई है, वरना तुम कभी ऐसा नहीं कहते।
0: दुख का राग अलापने से सुख नहीं मिलता नीरजा। जीवन की राहें बहुत लंबी हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम किसी अच्छे युवक से विवाह कर लो और मुझे भूल जाओ सदा के।
1: ये तुम कह रहे हो आनंद, तुम कह रहे हो।

0: ओ नीरजा, आप और मेरे यहाँ, यकीन नहीं होता कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा।
1: जी नहीं, ये हकीकत है। तुम मुझे बहुत चाहते हो नरूप।
0: जी
1: मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उपेक्षा की, अपमान किया।
0: लेकिन
1: काश मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मैं कभी तुम्हारा दिल ना दुखाती।
0: कुछ मेरी बात भी तो सुनिए।
1: मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। उस दिन कॉलेज के सालाना जलसे में तुम मुझे फूल देने आए थे और मैं ठुकरा कर चली गई थी। मुझे माफ कर दो रूप।
0: बस करो नीरजा, तुम कहना क्या चाहती हो।
1: मुझे तुमसे हमदर्दी है।
0: बस
1: मैं तुमसे प्रेम करती हूँ।
0: बस
1: मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
0: काश ये इरादा तुमने पहले कर लिया होता, अब बहुत देर हो चुकी है।
1: क्या?
0: और मैं एक दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी मिस नीरजा। अरे सुनिए सुनिए तो, मेरी शादी का कार्ड तो लेती जाइए।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से एफएम बैंड पर या आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। रात के 8:15 हो चुके हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
0: जी हाँ प्यारे सुनने वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गीत गुंजन में। गर्मियों का मौसम है और इस गर्मी में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी फुहारें जो सर्दी का एहसास करा रही हैं, कभी कभी हमारी सड़कों को भिगा रही हैं, उसका मजा कुछ और है ना।

वही प्रोग्राम की शुरुआत हुई इस प्यारे से नगमे से, सनम रे से। और आज आपको पता है श्रोताओं, आज एक फिल्मी हस्ती का जन्मदिन है। जी हां, शिल्पा राव का जन्म आज ही के दिन 1984 को जमशेदपुर में हुआ था। और उनका वास्तविक नाम जो है ना, वो अपेक्षा राव है। उन्होंने अपने संगीत सफर की जो शुरुआत की थी वो जिंगल्स से की, जो जिंगल्स बजते हैं रेडियो में उससे की, जो गाकर एड्स बनते हैं ना उन्हीं को

सिंगल कहते हैं। और फिर इसके बाद फिल्म अनवर के गीत तो से नैना लागे से बॉलीवुड में उनकी पहचान बनी। इसके बाद खुदा जाने, इश्क शावा, मेहरबान, घुंगरू, बेशर्म रंग और चलेया जैसे कई लोकप्रिय गीतों से उन्होंने श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाई है। उनकी गायकी की सबसे बड़ी जो खूबी है, जो विशेषता है, वो ये है कि उनके गीतों में भावनाओं की गहराई और आवाज की एक खास नजाकत सुनने को मिलती है। हाल के वर्षों में उन्हें फिल्म जवान के गीत चलेया के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक की के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया है। तो आइए जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ शिल्पा राव की सुरीली आवाज में इसी गाने को सुनते हैं जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। सुनते हैं।

दोस्तों, रिश्तों की खूबसूरती भी बड़ी अजीब होती है। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान दिल को जीत लेती है, तो कभी एक छोटी सी नाराजगी बड़ी बन जाती है। प्यार में अक्सर बातें बड़ी नहीं होती, उन्हें महसूस करने का अंदाज बड़ा होता है। और जब मन में अपनापन हो तो छोटी सी बात भी यादगार बन जाती है। ऐसी कुछ फीलिंग्स को पिरोया है इस अगले गाने में। सैम बहादुर फिल्म का ये गाना है, श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज में है, सुनते हैं।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: हेलो
5: सुनो टेलीफोन नंबर
6: माय नंबर इज
7: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
8: जी हाँ दोस्तों, जरूर जुड़िएगा इस प्रोग्राम में आज रात 9:30 से लेकर 10:30 तक।

आपका दोस्त सदक रहेगा आपके साथ इस प्रोग्राम को लेकर। नंबर होगा 7376 80 40 90। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है गीत गुंजन, कुछ प्यारी प्यारी बातों के साथ आप नगमे सुन रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि इश्क सिर्फ खुशी का नाम नहीं है, ये एक एहसास भी है जो इंसान को उसकी हदों तक ले जाता है। प्रेम में डूबा हुआ दिल कभी दुनिया जीत लेने का हौसला रखता है तो कभी उसी प्रेम के लिए हर दर्द सहने को तैयार हो जाता है। इश्क की यही दीवानगी शायरों की कलम में, कवियों के शब्दों में और गीतों की धुनों में बार बार सुनाई देती है।

दोस्तों, कभी कभी किसी की एक नजर ही दिल की दुनिया बदल देती है। बिना कुछ कहे, बिना कोई वादा किए, कोई ऐसा असर छोड़ जाता है कि इंसान खुद को उसी के ख्यालों में खोया हुआ पाता है। मोहब्बत की यही खामोशी कशिश दिल को बहका भी देती है और महका भी देती है। इन्हीं नाजुक एहसासों को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है फिल्म उमराव जान का ये सदाबहार गाना। सुनिए।

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ खत्म हो रहा गीत गुंजन का ये प्यारा सा सफर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे आथर जैसा ना कोई।
1: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं,
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी।
0: रात्रि के 8:45 हुए हैं, आप गीत गुंजन सुन रहे हैं, आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, दिल्ली केंद्र से सुनिए समाचार
5: के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र

0: वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
4: पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन।
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार है। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में

0: लगातार सातवीं भागीदारी होगी।
1: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत में वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
3: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,000
2: है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
5: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
4: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
6: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
4: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी

0: के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: भारत के ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
1: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
0: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
1: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
0: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006। बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, गौड़ा बसंतपुर, कटेहरी, अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि 9:30 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 7376 8040 90 नंबर डायल कीजिएगा, जुड़िएगा अपने इस दोस्त से, आपकी दिलचस्प बातों के साथ आपकी पसंद का नगमा सुनाएंगे हम। और गजलों के सिलसिले में आइए लता मंगेशकर की आवाज को सुनते हैं। इस गजल में इश्क की बातें, ख्वाब की बातें लगती हैं।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।

0: हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
0: प्रोग्राम हेलो अयोध्या में आप सभी का स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त सदक। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए जुड़ते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को से जो अब से लेकर रात 10:30 तक चलेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम है ये। जी हाँ, आपको डायल करना 73-76-80-40-90। देखिए हमारे एक श्रोता ने डायल कर दिया है बात करने के लिए। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
2: नमस्कार,
0: मनकापुर से। कौन बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए सर अपना।
2: मोहम्मद शरीफ बोल रहे हैं।
0: मोहम्मद शरीफ
2: जी।
0: अच्छा, तो आपका नाम मोहम्मद शरीफ है
2: जी।
0: आप अपने आप को शरीफ मानते भी हैं
2: जी?
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए खुद को खुद से ज्यादा

0: भी नहीं जानता है कि नहीं शरीफ भाई। हम अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं, और अगर हम जिम्मेदारी से बात कह सकते हैं कि हम शरीफ हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। हम आपको सैल्यूट करते हैं। चलिए ये बताइए किस का गाना सुनने वाले हैं आज आप? पहला फोन, पहली कॉल लगी है आपकी। किस का?
1: साथी।
0: साथी, ओके। साथी के तो गाने बड़े प्यारे प्यारे हैं, कौन सा सुनेंगे साथी में आप?
1: हुई
0: आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, साथी कोई भूला याद आया। ओके, क्या कह रहे हैं?
1: 2-3 महीने के बाद मिलाए हैं।
0: ये आपने बहुत ही नेक काम किया है शरीफ भाई, और सीधा कहूंगा शराफत वाला काम किया है। हमारे वो श्रोता जो लगातार बहुत जल्दी जल्दी मिलाते हैं, उनसे मैं आपके ही जरिए गुजारिश भी कर लूं कि भाई जिनकी कॉल्स इधर हफ्ते दो हफ्ते में लगी हो, प्लीज वो लोग डायल ना करें, उन्हें हमें वापस करना पड़ जाएगा, क्योंकि हम नए नए श्रोताओं से, अपने बाकी श्रोताओं से भी तो जुड़ना चाहते हैं, है कि नहीं? क्या करते हैं आप शरीफ भाई? अच्छा चलिए, तो आप खेती बाड़ी करते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये जो मौसम इस वक्त है, ये आपके खेती के लिए ठीक है? हल्की फुल्की जो बौछार वगैरह पड़ रही है, बढ़िया है?
1: अभी फिलहाल तक जो मौसम बदला हुआ है, अभी तक तो गोल धूप बहुत तेज है, दिमाग खराब हो जाता
0: है। ये तो सही है, तो सुबह शाम काम करिए, दोपहर में मत जाइए खेतों में ना, है कि नहीं? एकदम सुबह भोर में चले जाइए। चलिए बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, अच्छा लगा। आपकी पसंद का गाना पहुंचा रहे हैं, ठीक है शरीफ भाई? फिर फोन कीजिएगा ऐसे ही कुछ समय बाद। जी बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: हुए हैं, यानी बहुत दिनों से जिनकी फोन कॉल्स नहीं लगी हैं, वो भी कोशिश करें और नए नए लोग जुड़ने की कोशिश करें आज के इस प्रोग्राम से। हमें बहुत खुशी होगी और हमारे एक जानी पहचानी श्रोता जुड़ने जा रही हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना परिचय दें हमारे श्रोताओं को।
1: सर रिंकी पिंकी बात कर रहे हैं, जगदीशपुर सीवर जिला।
0: रिंकी पिंकी एक में दो नाम है
1: जी सर?
0: ज्यादातर एक लोग का नाम रिंकी होता है, एक का पिंकी होता है, आपका दोनों रख दिया
1: जी,
0: मम्मी
1: सर, दोनों सिस्टर हैं तो सर एक ही कॉल में शामिल होते हैं। तो
0: ओहो, ये बात है। मुझे लगा कि आपका अकेले ही नाम मम्मी पापा ने प्यार से रिंकी पिंकी रख दिया कि दो बिटिया का काम एक बिटिया का हो जाए।
1: नहीं है सर, अच्छा। मेरी बड़ी सिस्टर का नाम रिंकी, मेरा नाम पिंकी और हम लोग एक ही कॉल एक ही मैसेज में शामिल होते हैं।
0: ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया काम ये करती हैं आप। चलिए, तो मेरी बात पिंकी से हो रही है ना, पिंकी जी से हो रही है मेरी बात?
1: जी जी सर, बोले सर कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं बताइए और क्या करती हैं?
1: सर हम बहुत अच्छे हैं और आज आपके कार्यक्रम में हमारी बहुत दिनों बाद कॉल लगी तो सर हम और भी अच्छे हो गए।
0: सेम हियर, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है जब किसी श्रोता को हमारे प्रोग्राम में जुड़कर अच्छा लगता है। वैसे
1: जी
0: मैंने
1: सर, मैं आपके यहाँ के मतलब कार्यक्रम सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके यहाँ से एक कार्यक्रम आता था बातें आसपास की, कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है और हाँ। गीत गुंजन कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगता है।
0: अभी भी बातें आसपास की आ रहा है, सैटरडे संडे आता है 9:30 से 10 के बीच में।
1: जी जी सर बिल्कुल
0: हाँ, बाकी दिन जो है फोन ही हो गया।
1: सर मेरे यहाँ ना कभी कभी चैनल नहीं आपको पकड़ता तो थोड़ा सा कार्यक्रम कम सुन पाते हैं, बाकी कंटिन्यू कार्यक्रम सुनते रहते हैं आपका।
0: चलिए बहुत शुक्रिया आपको। तो गाना आप सुन रही है जुनून फिल्म का ना, वक्त काटे नहीं कटता, बहुत प्यारा गीत है। चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
1: सर, मेरी बात किस सर से हो रही?
0: मैं सदक बोल रहा हूँ, सदक।
1: अच्छा, सदक बहुत जी। अच्छा लगा सर आपसे बात करके।
0: थैंक यू, फिर फोन कीजिएगा।
1: थैंक यू सर, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: भाई ये गीत कह रहा वक्त कटे नहीं कटता है, लेकिन हम लोगों का वक्त इस प्रोग्राम में बहुत प्यारा कटता है क्योंकि इतने प्यारे प्यारे श्रोता और इतने अच्छे अच्छे गीत इसमें सुनवाते हैं आप, ये मजा ही आ जाता है। हेलो
1: हेलो सर
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहां से फोन लगाया आपने?
1: सर मुन्ना बोल रहे हैं सुहावल से। सर
0: अरे मुन्ना जी हमारे नियमित श्रोता सुहावल से जुड़ रहे हैं
1: जी। सर
0: चलिए हमारे श्रोताओं को अपना परिचय और विस्तार से दे दीजिए, क्या करते हैं आप?
1: सर हम छोटा सा फार्मा का कारोबार करते हैं सर।
0: सॉरी किसका?
1: ये फार्मा सर, बल्ला पका का।
0: फार्मा का काम करते हैं? ओके
1: जी सर।
0: तो फार्मा तो बहुत सारी चीजों का बनता है, आप किस चीज का फार्मा बनाते हैं?
1: सर लोहे का। सर
0: लोहे का फार्मा तैयार करते हैं। ओके
1: जी सर।
0: तो आज गाना कौन सा सुन रहे हैं मुन्ना जी?
1: सर पुरानी बड़े मियां छोटे मियां का टाटा सॉन्ग।
0: पुरानी बड़े मियां छोटे मियां मतलब ये अमिताभ और उनकी वाली नहीं?
1: जी जी जी जी जी जी सर जी।
0: अच्छा पुरानी हो गई हो? हाँ भाई पुरानी तो हो ही गई
1: जी सर, एक नई ही आई ना सर।
0: हाँ उसके बाद भी एक आ गई, ठीक बात कह रहे हैं
1: जी सर।
0: तो ये
1: जी,
0: फिल्म आपने
1: सर बोल रहे हैं सर?
0: हाँ मैं सदक बोल रहा हूँ जी
1: सर, लव यू सर।
0: मुन्ना भाई ये बताइए कि ये फिल्म आपने देखी थी कि नहीं, बड़े मियां छोटे मियां?
1: सर कई बार देखा है।
0: हाँ मुझे भी बहुत अच्छी लगी, इतनी बढ़िया एंटरटेनर है ना गोविंदा जी ने भी जो नाक में आवाज अपनी बनाई है उसमें, हैं बड़े ऐसे करके
1: जो दोनों हैं सर, दोनों का अपना अपना,
0: दोनों ने अपने किरदार को एक नया अंदाज उसमें डाला है।
1: जैसे सर आप पूरी महफिल लूटते हैं वैसे वो दोनों महफिल लूट लेते हैं।
0: अरे थैंक यू सर। चलिए मुन्ना सर तो बड़ा और मुझे एक चीज याद आ रही, पता बचपन में जब स्कूल में हम थे तो हमारे एक मित्र थे सुधाकर जी, तो हम लोगों ने वो फिल्म उस वक्त आई थी तो ये किरदार भी किया था, मैं बड़े बना था वो छोटे बने थे, तो हम लोगों ने उसमें कॉमेडी भी की थी, तो मुझे वो दिन याद आ गया आपकी बात सुनकर। चलिए बहुत शुक्रिया मुन्ना जी, और ये प्यारा सा गाना आपकी पसंद पर सब लोग सुनेंगे। हमें यूं ही फोन करते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी से। थैंक यू
1: सर।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
2: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
3: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
2: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
3: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
2: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
3: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
2: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
4: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट है।
5: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
4: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
5: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
4: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंके, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
5: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। जेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
4: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
6: हेलो
7: जी सर।
6: हाँ जी सर, नमस्कार, बताइए अपना नाम और कहाँ से आपने फोन लगाया सर, बताएं।
7: ग्राम मुगीसापुर पोस्ट नंदपुर जिला कानपुर से आज से रामेश्वर कटेरिया बोल रहे हैं।
6: रामेश्वर कटेरिया जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम हेलो अयोध्या में। और आपने कानपुर से याद किया,
7: बहुत बहुत धन्यवाद
6: आपको भी।
7: मैं पुराना श्रोता हूँ, पुराना श्रोता हूँ
6: और आपको हमने इंतजार कराया, इसके लिए माफी चाहते हैं। थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ा विज्ञापनों की वजह से, इसके लिए माफी चाहेंगे।
7: जी सर।
6: तो कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आज आप सबको?
7: मेरे सनम का,
6: रोका कई बार मैंने, है प्यारा गाना है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। क्या करते हैं सर आप?
7: हम तो विकलांग है सर।
6: किस प्रकार की?
7: पैर मेरा एक्सीडेंट से पैर खराब हो गया।
6: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल चल नहीं पाते हैं?
7: नहीं, चल लेते, थोड़ा बहुत चल लेते।
6: कुछ अपने ऐसा शरीर में कुछ इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके, चीजें जो लगती हैं सहयोगी चीजें, तो उसका प्रयोग करके भी नहीं चल पाते?
7: जी, मेरा कानपुर से इलाज चल रहा है सर, थोड़ा थोड़ा हम तरकने लगे, एक साल कहाँ चल पाए, बिल्कुल परे रहते हैं।
6: जी जी जी, चलिए बढ़िया।
7: बस यही आकाशवाणी में लगे रहते हैं, हर केंद्रों में मेल भेजना।
6: हाँ हाँ।
7: हर केंद्रों में प्रोग्राम सुनना।
6: यानी कि आपके पैर अगर प्रकृति ने ले लिए हैं तो आपने आकाशवाणी को अपना दोस्त बना लिया है कि नहीं?
7: जी, इसी मेरा टाइम का, हम बराबर सुबह 8 बजे से लेके 11-12 बजे रात तक
6: जी
7: बस मोबाइल ऐप पर बराबर सुनता।
6: बहुत अच्छा करते हैं और बहुत खुशी होती है कि हम आकाशवाणी के जरिए आप सब तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बजाते हैं फिर, ये प्यारा सा आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज में। ठीक है, मैं फिर फोन कीजिएगा और आकाशवाणी अयोध्या जरूर सुनते रहिए। ठीक है, थैंक यू।
7: नमस्कार।
6: नमस्कार।

0: भाई आइए बात करते हैं हम अपने अगले कॉलर से। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही है?
1: सर स्वाति सिंह बात कर रहे हैं, अंबरपुर मनकापुर बंदा से।
0: स्वाति सिंह जी का फोन लग गया, आप तो बड़ी नियमित तो श्रोता हैं हमारे प्रोग्राम की स्वाति
1: जी। सर जी सर, बिल्कुल सर, नियमित श्रोता है, फोन भी लगता रहता है हमारा और कॉल सुनते भी रहते हैं प्रोग्राम आपके।
0: जी जी बिल्कुल,
1: अच्छे से सब प्रोग्राम होते हैं, सर सुनना पड़ता है।
0: हाँ ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इतने अच्छे प्रोग्राम होते हैं कि सुनना ही पड़ता है। क्या करती हैं स्वाति आप?
1: सर घर पे रहते हैं, घर का काम करते हैं और पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, साथ में आईटीआई का कोर्स भी कर रहे हैं सर।
0: वेरी गुड, तो क्या कुछ बना रखा है आपने, मकसद लक्ष्य क्या बनाया है?
1: जी सर, फीमेल ब्यूटिशियन वर्क में जाना है हमको, इसलिए मतलब आईटीआई कर रहे हैं कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से।
0: ब्यूटिशियन वर्क में जाना अच्छा लगता है आपको, तो आप खुद भी सजना संवरना पसंद करती होंगी?
1: हाँ सर, बस ज्यादा नहीं क्योंकि घर पे उतना नहीं हो पाता है, शादी पार्टी में तो थोड़ा बहुत हो जाता है सर, ज्यादा नहीं भाई, दूसरों के लिए तो ज्यादा ही सोचना पड़ता है।
0: थोड़ा बहुत मत करिए, शादी पार्टी में पूरा करिए भाई, अपने ऊपर अभ्यास नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे सजाएंगी?
1: जी सर बिल्कुल।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी एक हुनर है और खुद को अच्छे से प्रस्तुत करना हर किसी को करना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, सीधी सी बात है। चलिए तो कौन सा गाना सुनवा रही सबको आप आज स्वाति? ब्यूटिशियन के साथ साथ आप सिंगर भी बनेंगी लग रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: शुक्रिया आपको भी सर, नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

0: भाई इस गीत में कस्में खाई जा रही दोनों तरफ से, लेकिन हमने तो ये करार कर रखा है कि हम अपने श्रोताओं की कॉल्स लेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी पसंद का गाना पहुंचाएंगे। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: राहुल शर्मा बोल रहे हैं, ग्राम कालीपुर पोस्ट में कटा सोहावल से।
0: सोहावल से राहुल शर्मा जी का बहुत स्वागत है। कौन सी फिल्म का गाना सुनिएगा सर?
1: सर ये दिले तुम्हें पता है,
0: बड़ा मकबूल गीत है, अलका जी की भी आवाज में है और उदित जी की भी आवाज में। उदित वाला सुनेंगे आप?
1: जी सर।
0: क्या करते हैं सर आप राहुल जी?
1: सर हम तो अपना ये काम करते हैं पेंटिंग वाला। सर
0: पेंटिंग का?
1: जी।
0: पेंटर हैं आप?
1: जी जी।
0: तो बड़ी बढ़िया काम है ये तो भाई, मुझे बड़ा आकर्षित करता है ये काम, क्योंकि रोज नई नई चीजें बनाना, रंग भरना, ये तो बड़े खूबसूरत काम है।
1: हमारा ये संविदा पे सर पुलिस लाइन में भी काम है।
0: अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो यानी कि आपके काम को हम वहाँ देख सकते हैं, है ना?
1: बाराबंकी पुलिस लाइन में भी सर काम करते हैं।
0: वाह। तो केवल टेक्स्ट मतलब अक्षर और ये कहाँ लिखते हैं कि चित्र वगैरह भी बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया सीनरी वगैरह भी बनाते हैं आप?
1: नहीं सर, ये जैसे पेंटिंग करते हैं, डिजाइन बनाते हैं सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। लीजिए आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं राहुल जी, हमें फिर फोन कीजिएगा और आकाशवाणी अयोध्या से ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है?
1: आज बहुत दिन बाद लगा था, हमारा लड़का नंबर बताया, तुम जाने हैं।
0: नहीं, नंबर आप याद कर लीजिए एकदम, 7376 8090 जो सुन रहे हैं।
1: पुराना नंबर जानते थे, उसी में मिला रहे थे, उसको लगे।
0: तो मतलब बहुत दिन से आप मेहनत कर रहे होंगे, पुराने नंबर पर कोई मतलब ही नहीं था उसका। भाई देखिए, रेडियो सुनते रहिए तो उसमें हम लोग नंबर भी जब बदलता है तो बताते हैं ना हम लोग, बहुत दिन से ये नंबर चल रहा है 7376 8090। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़ गए हैं, अब इसको सेव कर लीजिए, ठीक है? बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर।
1: जी,

0: वाह भाई, क्या प्यारा गाना चल रहा था। और बात करते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो
1: जी, नमस्ते सर।
0: नमस्कार सर, अपना परिचय दें।
1: सर अंतपुर पालनगर अयोध्या।
0: अपना नाम भी बता दीजिए सर।
1: सर नन्नेलाल यादव जी।
0: नन्नेलाल यादव जी से मेरी बात हो रही है। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। इससे पहले भी आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं कभी?
1: अरे सर, कम से कम जब से प्रोग्राम चल रहा तब से हम सुन रहे हैं।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: हम कॉल लगाते हैं सर, लगता नहीं, हम बहुत परेशान हैं।
0: ये ऐसी परेशानी जी
1: सर, जब भी लगाते हैं बेस्ट बेस्ट।
0: यही तो
1: परेशान है सर।
0: नहीं, परेशान मत होइए भाई, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ही यही है, इसमें तो व्यस्त रहेगा ही। इतने सारे श्रोता जुड़ना चाहते हैं ना, हजारों, कितनी दूर दूर से लोग फोन करते हैं। तो
1: ये कम से कम 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, पहली बार फोन लगा है।
0: वाह वाह वाह, आपको बहुत धन्यवाद है। मैं प्रणाम करता हूँ आपको यादव जी, कि आप 6 महीने की कोशिश करके हमारे प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, सच बताऊं
1: जी।
0: तो आप कौन सा गाना सुनेंगे
1: जी? नदी पार गाना सुनवा दीजिए।
0: ये वाला सुन, ये देखो आप कौन सी दिशा में, सब लोग सुनते रहते हैं, जोगी वाज सुनते हैं। आज सुना दे साची कहे तोरे आंगन से अमरे, अंगना में आई बहार भोजी, ठीक रहेगा
1: जी?
0: चलिए तो आज ये वाला सुनवाते हैं आपकी पसंद पर। आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: फिर सखी सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनते अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: जी हाँ प्यारे श्रोताओं, ये है आपका मन का रेडियो और लगभग 20 मिनट पूरे मुकम्मल बाकी हैं और अब एड फ्री होने वाला है ये पूरा पार्ट, यानी कि अगले जो 20 मिनट होंगे उसमें कोई विज्ञापन नहीं है। आप जुड़िए 73-76-80-40-90 नंबर को डायल करके, जैसे हमारे ये श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो
4: सर, रुपेश बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत टिकरी नवाबगंज गोंडा से, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार रुपेश जी, और आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आज आपने हेलो जो युवा संवाद हमारा होता है उसमें भी आप जुड़े थे और बड़ा अच्छा लगता है।
4: हमने और जीनत जी ने रिहर्सल किया था ना, प्री रिहर्सल, तो हमने कहा लाइए अब ऑनलाइन ऑन एयर भी आ जाते हैं प्रोग्राम।
3: क्या बात है, नहीं आना ही चाहिए। देखिए यू वाणी एक अलग सेक्शन है, उसमें हमारे जो श्रोता जुड़ते हैं अपने विचारों के साथ और उसमें जो विषय रखे जाते हैं वो अलग विषय। फोन इन प्रोग्राम में हम लोग कोशिश करते हैं कि
4: क्या ऐसा प्रभाव है सर जी ना कि जी। अगर एक महीने पहले भी मेरी कॉल लगी रहेगी ना और एक महीने बाद भी मैं करूंगा
3: जी,
4: तभी ऐसा मतलब एक प्रभाव जाता है कि अरे इनको तो हम जानते हैं या इनसे तो अक्सर बात होती रहती है, भले एक महीने का समय बीत गया हो, लेकिन ऐसा क्या प्रभाव है कि ऐसा होता है।
3: मैं बता देता हूँ कैसे होता है। ये इस तरह से होता है क्योंकि आप जब आते हैं ना तो अपनी जो बातें होती हैं उससे प्रभाव छोड़ देते हैं आरजे के मस्तिष्क में, तो उसे लगता है कि हमारी इनसे बात हुई थी, है ना। वो आपकी क्वालिटी है, उसी वजह से ऐसा होता है।
4: आपसे तो सर जी मेरी अब बात हो रही है, बाकी आपको तो हमने 15-16 साल पहले ही टेलीविजन स्क्रीन पर देखा था।
3: अरे शुक्रिया,
4: लोग जानते हैं कि आप टेलीविजन स्टार भी हैं।
3: जी जी, 2006 में मैं टीवी पर हुआ करता था जी, दूरदर्शन लखनऊ पर जी।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: बहुत शुक्रिया। अगर आपने वहां देखा,
4: कभी भी नहीं सोचा था उस समय कि आपसे मेरी कभी आमने सामने भी बात होगी।
3: थैंक यू रुपेश भाई, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो ये बताइए आज गाना कौन सा सुनवा रहे हैं आप?
4: सैनिक मूवी का सुना दीजिए सर जी।
3: सैनिक फिल्म का आप सुनेंगे, कितनी हसरत है यही
4: जी।
3: चलिए बाकी बातें होती रहती हैं आपसे युवा संवाद में, गाना सुनाते हैं आपकी पसंद।
4: जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
3: बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लगा रुपेश भाई, थैंक यू।
4: बहुत बहुत

0: भाई इस प्यारे से नगमे के बीच हमारे अगले प्यारे श्रोता शामिल होंगे। हेलो हेलो।
1: ओ पूरी आकाशवाणी टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सदक भाई आपको भी मेरा प्यार से भरा नमस्कार।
0: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। किन साहब से बात हो रही है हमारी सर?
1: जी हाँ, कपिल देव ने एक बार फिर से कॉल लगा दिया बड़ी ही श्रद्धा से। आज गांव सिरसिंगा पोस्ट सराय राशि में फिर से बोल रहा हूँ, जिला अयोध्या से।
0: वाह भाई कपिल देव जी, सराय राशि से जुड़ते हैं आप इतने प्यारे अंदाज में, इतने अनोखे अंदाज में कि मजा ही आ गया। शुक्रिया। तो कौन सा गाना सुनवाएंगे आज सबको आप?
1: आज की फिल्म रहेगी राजा। उसमें एक गाना है सर जी, फूल मांगू ना बहार मांगू मैं तो सनम तेरा
0: प्यार मांगू। वाह भाई, प्यार से बढ़कर है ही क्या चीज।
1: जी हाँ, ये गाना सभी श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहते हैं, जैसे कानपुर से पूनम दीदी
0: जी,
1: और त्रिपुरा से अविनाश भाई, और रिंकी पिंकी दोनों बहनों को ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, और सभी श्रोताओं को।
0: भाई एक चीज कपिल देव जी हम जानना चाहेंगे, आप अयोध्या के सराय राशि से जुड़े हुए हैं और जिन श्रोताओं के आपने नाम लिए वो सभी दूसरी जगहों के थे, यहाँ तक कि दूसरे प्रांत से श्रोता हैं, तो आप और इसका ये मतलब होता है कि आप बहुत सारे रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए हैं और भी कार्यक्रमों से आप जुड़ते हैं ना?
1: जी हम ज्यादातर आकाशवाणी अध्याय सुनते हैं, लेकिन आकाशवाणी अध्याय में जब उन श्रोताओं को लगाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: बहुत अच्छा अच्छा मतलब बात सुनने को मिलता है, बहुत अच्छी जानकारियां मिलती हैं।
0: मैं जानना चाह रहा था कि आकाशवाणी अयोध्या के अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म आप सुनते हैं और कौन कौन से आकाशवाणी के चैनल सुनते हैं आप?
1: जी पहले तो लखनऊ सुनता था, जब क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी से नहीं रिले की जाती थी तो मैं लखनऊ फॉलो करता था, लेकिन इस समय मैं आकाशवाणी से ही जुड़ा हुआ अयोध्या से।
0: अब तो आकाशवाणी अयोध्या से भी सारी कमेंट्रीज लगभग जाती है कि नहीं, भारत के जितने मैचेस होते हैं हम लोग सब देख

0: सुनाते हैं और वर्ल्ड कप तो सारे ही सुनाते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया कपिल देव भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है और बातों का सिलसिला
1: आपको हाँ। मेरा प्यार भरा फिर से नमस्कार,
0: बहुत शुक्रिया। लीजिए अपनी पसंद का गाना सुनिए।

0: भाई आइए जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं धीरेन्द्र मिश्र बोल रहा हूँ, गोंडा उत्तर प्रदेश, सरसगंज तहसील, गोलहिया ग्राम।
0: अच्छा, धीरेन्द्र मिश्रा जी से बात हो रही है गोंडा से। इससे पहले आप इस कार्यक्रम में कब जुड़े धीरेन्द्र जी?
1: जी बहुत पहले मुझे लगाया था, जब वो सेंट्री लाइन आपके यहाँ चल रही थी, लैंड लाइन चल रही थी, और आगे जो था वो नंबर
0: याद नहीं था,
1: लेकिन मैंने लगाया था बहुत दिन पहले, तो लग गया था वहाँ पे।
0: वाह भाई वाह, तो सालों बाद आप जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र जी, बहुत शुक्रिया।
1: जी कई सालों बाद लगा था।
0: हाँ, तो आज आप नया गाना सुनने की आप ख्वाहिश कर रहे हैं, मैं जरूर सुनाऊंगा। क्या करते हैं आप?
1: जी जी,
0: क्या करते हैं सर आप?
1: जी मैं इसमें फार्मर हूँ गांव में।
0: अच्छा, फार्मर है।
1: हाँ,
0: तो क्या कुछ
1: करता?
0: हाँ, खेत में क्या कुछ लगा रखे हैं आप इस वक्त?
1: जी जी जी, हाँ इस समय गेहूँ क्या लगा हुआ, धान धान लगाने के लिए तैयारी हो रही है सर।
0: खेत की तैयारी बन रही है ना? अच्छा, धान में पानी खूब लगता है, तो पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं आप अपने खेत में सर?
1: जी पानी की व्यवस्था मोटर के द्वारा होती है सर।
0: अच्छा,
1: लाइट लाइट रहती है, उसकी मोटर लगा दिया जाता है।

0: तो वही पाइपलाइन द्वारा, अब तो पाइपलाइन की व्यवस्था हो गई है, तो
1: जी जी जी बढ़िया,
0: पाइपलाइन द्वारा वो जाता है पानी खेतों में। जी
1: बहुत बढ़िया। तो आपके घर में
0: जी
1: और लोग भी खेती में आपका सहयोग करते हैं कि आप अकेले और दूसरों को हेल्प लेकर करते हैं, कैसे
0: जी
1: करते
0: करते
1: हैं?
0: हैं, पिताजी हैं हमारे और हम हैं,
1: अच्छा, दोनों लोग
0: जी
1: मिलकर करते
0: चाचा
1: हैं।
0: हैं,
1: चाचा है, ये बढ़िया है।
0: चाचा तेरे भाई जी हैं, सभी
1: जी, तो
0: लोग मिलकर करते हैं। ट्रैक्टर
1: मिश्रा जी,
0: भी है हमारे घर में।
1: वाह, हम आपके पूरे परिवार को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप सभी मिलकर अन्नदाता हैं और अन्नदाता का सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो बहुत शुक्रिया। और आपने कहा
0: जी
1: अपनी
0: मैं
1: पसंद का,
0: कुछ नाम लेना चाहता हूँ
1: ले
0: सर।
1: लीजिए ले लीजिए सर, ले लीजिए, मैं गाना
0: जी
1: चलाता हूँ।
0: जी जी हमारे चाचा के लड़के हैं राहुल मिश्रा, रोहित
1: जी
0: मिश्रा, और क्या नाम है मोहित शोभित, और हमारे भाई हैं भूपेंद्र मिश्रा जो बनारस में रहते हैं।
1: जी, चलिए बहुत
0: जी
1: शुक्रिया।
0: सभी को डेडिकेट है ये गाना,
1: ये नया
0: ठीक
1: गाना
0: है
1: है, धुरंधर
0: ओके।
1: टू फिल्म से हम सुनवा रहे हैं, बहुत
0: जी
1: शुक्रिया।
0: जी जय श्री राम का,
1: जय श्री राम।
0: ठीक।

0: भाई इस नए गाने के बीच आइए अपने आखिरी श्रोता से जुड़ते हैं इस प्रोग्राम के। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: गोंडा से भाषा पांडे।
0: गोंडा से, नाम फिर से बताइए।
1: भाषा
0: पांडे
1: जी सर।
0: अरे वाह, नाम तो आपका अच्छा है, भाषा। चलिए, भाषा आपकी अच्छी होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ, है ना? और गाना भी आपकी पसंद का हमने निकाल लिया है, ठीक है? क्या करती हैं आप भाषा?
1: पढ़ाई भी करती हूँ और खाना बनाने का शौक है।
0: पढ़ाई कर, रेडियो सुनती हैं, खाना बनाने का शौक है, पढ़ाई। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? बेवकूफ बनाना मत कहिएगा।
1: मीठे में सबसे अच्छा खीर बना लेती हूँ और चाय भी बहुत अच्छी बनाती हूँ अपने लिए।
0: वाह भाई, चाय अच्छी बनाती है तो बड़ा बढ़िया बात है। चलिए, लेकिन वक्त आप बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रही, बात कर सकते थे आपसे, लेकिन अभी 28 होने वाला है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपकी पसंद का गाना भी बज जाए ना, तो बढ़िया रहेगा भाषा। तो चलिए।

0: उड़ते रहिए आकाशवाणी अयोध्या से। हाँ बताइए, बोल दीजिए बोल दीजिए।
1: बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, इतनी देर से जाके लगी है।
0: हाँ, बहुत देर करते करते बहुत देर कर दी आपने और थोड़ा ही वक्त बचा है। चलिए आपकी पसंद का गाना पहुंच रहा है फिलहाल, थोड़ा सा ही चाहिए।
1: नमस्ते।

गीत के साथ समाप्त हो रहा हमारा आज का ये सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आपको ये कार्यक्रम हमने पहुंचाया जिसमें तकनीकी सहयोग हमें दिया श्री राजकुमार मौर्य जी ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जयंत पटेल। अब अपने दोस्त सदक हुसैन को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। FM बैंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप akashvani.gov.in पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुन रहे हैं। रात के 10:30 हुए हैं। आइए आपको ले चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां अब से लेकर रात 11 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

0: की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

0: लिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात के 11 बजे हैं। आइए हमारे मुंबई केंद्र से सुनिए समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर

0: से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including education, health and employment.
2: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they are doing. Inclusive Human Development covers all the 4 stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is the key to success.
1: A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the centre and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Nagaland Chief Minister Naifiu Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah termed it as a historic moment, as this initiative will enhance the prospects of oil and natural gas exploration and opens up possibilities for mineral mining as well. India strongly condemned the recent attack on Palau-flagged tanker MT Setebalo off the coast of Oman, in which 3 Indian nationals lost their lives. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Ranbir Jaiswal said that in this regard, the government has lodged a strong protest by summoning the U.S. Charged Affairs. Mr. Jaiswal noted that the continuing attacks on shipping in the region are deeply worrisome and linked to the ongoing conflict. All four candidates of the National Democratic Alliance, NDA, have been elected unopposed to the Rajya Sabha.